FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये संसार माया द्वारा रचित है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य ये जानता है कि उसे किसी न किसी दिन इस संसार को छोड़ के चले जाना है, किंतु फिर भी माया के वशीभूत वो प्रतिदिन अधिक से अधिक एकत्र करने का प्रयास करता है। यदि वो अधिक से अधिक प्रभु नाम को एकत्र करने का प्रयास करे तो जीवन इसी संसार में स्वर्ग बन जाए।

0: मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे पंडित जसराज, कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, ए हरिहरन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार आनंद अनुभूति। आलेख जे आर यादव का है, वाचन कर रही हैं राखी कटारा।
1: प्रत्येक सुख उपभोग के बाद दुख आता है। ये दुख उसी क्षण आ सकता है अथवा संभव है कुछ देर में आए। जो आत्मा जितनी उन्नत है उसे सुख के बाद दुख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। हमें सुख दुख दोनों ही नहीं चाहिए। ये दोनों ही हमारे प्रकृति स्वरूप को भुला देते हैं। दोनों ही जंजीर हैं, एक लोहे की तो दूसरी सोने की। इन दोनों के पीछे ही आत्मा है, उसमें न सुख है न दुख। सुख दुख दोनों ही अवस्था विशेष हैं और प्रत्येक अवस्था सदा परिवर्तनशील होती है, परंतु आत्मा आनंद स्वरूप, अपरिणामी और शांति स्वरूप है। हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, वो तो हमारा प्रकृत स्वरूप है। केवल मैल को धो डालो तभी उसका दर्शन होगा। इस आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर हम जगत से ठीक ठीक प्रेम कर सकेंगे। खूब उच्च भाव में अपने को प्रतिष्ठित करो। मैं अनंत आत्म स्वरूप हूँ, ये समझकर हमें जगत प्रपंच की ओर संपूर्ण शांत भाव से दृष्टिपात करना होगा। ये जगत एक छोटे बच्चे के खिलौने के समान है। हम जब उसे समझ लेंगे तब जगत में कुछ भी क्यों न हो वो हमें चंचल नहीं कर सकेगा। यदि प्रशंसा से मन प्रसन्न होगा तो निंदा से वो अवश्य ही संतप्त हो जाएगा। केवल इंद्रियों का ही नहीं मन का भी समस्त सुख अनित्य है, किंतु हमारे भीतर ही वो निरपेक्ष सुख रहता है जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहता। ये सुख पूरी तरह स्वायत्त और आनंद स्वरूप है। सुख के लिए आभ्यंतरिक आत्मा पर हम जितना निर्भर रहेंगे उतना ही हम आध्यात्मिक होंगे। इस आत्मानंद को ही जगत में धर्म कहते हैं। जगत में दुख विरहित सुख, अशुभ विरहित शुभ पाने की संभावना कदापि नहीं है, क्योंकि जीवन का अर्थ ही है साम्य भाव की विच्युति। हमें चाहिए मुक्ति। जीवन सुख अथवा शुभ कुछ भी नहीं है। सृष्टि प्रवाह अनंत काल से चल रहा है, ना उसका आदि है न अंत। वो एक अनंत सागर के ऊपर ही निरंतर गतिशील तरंग के समान है। इसमें कुछ ऐसे गहरे स्थल हैं जहां हम अभी नहीं पहुंचे हैं और कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहां साम्य भाव पुनः स्थापित हो चुका है, किंतु ऊपर की सतह पर तरंग सर्वदा ही उठती रहती है। वहां पर अनंत काल से साम्यावस्था को प्राप्त करने की चेष्टा चलती ही रहती है। जीवन और मृत्यु एक ही वस्तु के विभिन्न नाम मात्र हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही माया हैं। ये अवस्था स्पष्ट रूप से समझी नहीं जा सकती। एक समय

0: जीवित रहने की चेष्टा होती है तो दूसरे ही क्षण विनाश या मृत्यु की। हमारी यथार्थ स्वरूप आत्मा इन दोनों से परे है। जब हम ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं तो ईश्वर और कुछ नहीं वास्तव में आत्मा ही है, जिससे हमने अपने को अलग कर लिया है और जिसे हम अपने से अलग मानकर पूजते हैं। किंतु वास्तव में ये उपासना उसी की है जो चिरकाल से एकमात्र ईश्वर पदवाच्य हमारी अंतरात्मा है। उस साम्यावस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए पहले हमें रजस द्वारा तमस को और सत्व द्वारा रजस को जीतना होगा। सत्व का अभिप्राय उस प्रकार की स्थिर धीर प्रशांत अवस्था है जिसके धीरे धीरे बढ़ने पर अंत में अन्यान्य भाव अर्थात रजस और तमस सर्वथा लुप्त हो जाते हैं। स्वरूप का बोध करके द्वंद्व रहित होकर रहना ही आनंद अनुभूति का उपाय है। संकीर्णताओं बंधनों से मुक्त होने पर ही स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त होती है। सत्य मार्ग के अवलंबन से विवेक वैराग्य से भक्ति प्रेम से ये अवस्था प्राप्त होती है। संसार को भगवान का खेल समझकर हर अवस्था में निर्विकार भाव से रहना ही आनंद अनुभूति का रहस्य है।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार आनंद अनुभूति। आलेख जे आर यादव का था, वाचन कर रही थी राखी कटारा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिव जी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का अंश से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्री के थे, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। रात्रि 10 बजे का समय रहेगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 6:50 पर होंगी खेती की बातें। विषय होगा खरपतवार नियंत्रण। प्रातः 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज की साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का पाक्षिक विवरण परिक्रमा के अंतर्गत। साथ ही आनंद लेंगे ब्रज लोक गीतों का। प्रातः 8:30 पर होगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। प्रातः 9 बजे आज सुनेंगे बातचीत जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन। चित्रेश सारस्वत से भेंट करेंगे ओपी सिंह। प्रातः 9:30 का समय रहेगा ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण का। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अतुल देसाई का ख्याल गायन। समय रहेगा प्रातः 10 बजे। प्रातः 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे रूपक फूल रह रस केवड़ा। दोपहर 12 बजे का समय होगा श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस का। रेखा माहौर के गाए हुए ब्रज लोकगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 से। 1:15 का समय होगा बहनों के कार्यक्रम घर अंगना का। कार्यक्रम में आज चर्चा होगी प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आनंद लेंगे लोकगीतों का। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता लू और गर्मी से बचाव। जानकारी देंगी डॉक्टर भारती गर्ग।

इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। साथ ही सुनवाएंगे आपको रिपोर्ट, मायोपिया कारण और निदान, डॉक्टर सुविता रथ से भेंट करेंगे ओपी सिंह।

0: दोपहर 2:30 पर होगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत, 3 होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:30 से होगा दूसरी सभा का आगाज कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में होगी आज की बात, स्टार्टअप को अपनाएं, साथ ही सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन। संध्या 6:15 पर किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे चर्चा, शुद्ध बीज को कैसे पहचाने, साथ ही गर्मियों में गहरी जुताई के लाभ। किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, धान की नर्सरी तैयार करने में सावधानियां एवं सुझाव। डॉक्टर ओपी सिंह भेंट करेंगे सुधीर अग्रवाल से। संध्या 6:45 का समय रहेगा संध्या वंदन कार्यक्रम का। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा में आज आप सुनेंगे देवकी और वासुदेव का विवाह। कथाकार होंगे गोस्वामी रामगोपाल। समय रहेगा संध्या 7:05। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:31 से। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 से। रात्रि 9:15 पर होंगे सुहाने तराने। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। खरपतवार नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, किसी भी तरह की फसल के लिए खरपतवार बहुत ही हानिकारक पौधा है। ये ऐसे पौधे हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति तथा उसकी कीमत को भी कम कर देते हैं, बल्कि मुख्य फसल के कीड़े और रोगों के कारकों को भी ये आश्रय देते हैं। ये खरपतवार मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, मुख्य फसल से खाद पानी के लिए लड़ते हैं। अगर इन पर अंकुश न लगाया गया तो यह मुख्य फसल को दबा करके स्वयं काफ़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और खेत में एक सहनशाह के रूप में उभरते हैं। अगर हमने बुवाई के 30 से 40 दिन तक खरपतवार को नियंत्रित कर दिया तो फसल को यह कम नुकसान पहुंचाते हैं। यह खरपतवार भूमि से खाद पानी पोषक तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में लेते हैं, जिससे हमारी जो मुख्य फसल है उसके लिए इन तत्वों की कमी हो जाती है और फसल कमजोर होकर के कम उत्पादन देती है। खरपतवार मुख्य रूप से 2 के होते हैं। एक तो वे खरपतवार जो किसी भी फसल के साथ बढ़ना शुरू करते हैं तथा उस फसल के कटाई के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इनका जीवन काल फसल के जीवन काल के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे खरपतवारों को हम सीजनल खरपतवार यानी कि एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि गेहूं में जो खरपतवार आते हैं, बथुआ, चटरी मटरी, जंगली जई या गेहूं का मामा, ये जो हैं खरपतवार गेहूं की फसल के साथ ही बढ़ते हैं और इन्हीं के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। वैसे हम खरपतवार नाशक दवाओं के प्रयोग से इन्हें कभी भी नष्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी खरपतवार होते हैं जिनका जीवन काल सालों भर चलता रहता है, जिन्हें बहुवर्षीय खरपतवार बोलते हैं। इनकी जड़ें बहुत गहराई तक मिट्टी में रहती हैं। ये आसानी से खड़ी फसल में

0: नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इनको नष्ट करने के लिए खाली खेतों में गर्मियों के दिनों में ही इनको नष्ट किया जा सकता है। हमारे यहाँ की जमीनों में बहुवर्षीय खरपतवारों में विशेष रूप से दूब घास, मौथा, बर्रू बहुत ही अधिक पाए जाते हैं। इनको नष्ट करने के लिए मई जून के महीनों में गहरी जुताई करी जाती है मिट्टी पलटने वाले हल से, जिससे कि इसकी जड़ें ऊपर आकर के सूख जाएं, और साथ ही खाली खेतों में रसायनों का प्रयोग भी कर देते हैं। 2,4-D है जिसकी 2 किलोग्राम मात्रा, डेलापान की 2 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं, फिर हल्की जुताई करके खेत में इसको मिला देते हैं। ऐसी क्रिया 2-3 साल तक की जाती है। तो इस तरह इन क्रियाओं को अपनाने से ये जो बहुवर्षीय खरपतवार को हम नष्ट कर सकते हैं।
1: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी खरपतवार नियंत्रण, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकि संघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्याम् विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले

0: श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रियराजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्य प्रदेशे पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत।

आशा भोसले के स्वर में अभी सुना आपने गीत फिल्म काजल से। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी, संगीत दिया था रवि ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है ज्वेल थीफ। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के हैं, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत से सजाया है एस डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में अभी सुना आपने गीत। फिल्म थी फर्ज। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है आराधना। स्वर किशोर कुमार का है, शब्द आनंद बख्शी के हैं, संगीत SD बर्मन ने दिया है।

इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार व निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान व गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
4: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
2: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने

0: शिक्षकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
1: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके चार पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्यक्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। इस बार सिर्फ घरों की गिनती ही नहीं बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी जनगणना का हिस्सा बन रही है। अभियान के पहले ही दिन 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। गोरखपुर में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं जिनमें 11,000 से अधिक प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
2: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600-800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल बांदा लगातार 6ठे दिन प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी और उरई में 45.4 डिग्री सेल्सियस और आगरा में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।

0: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
1: देश में कल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
5: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
6: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
5: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
6: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
5: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
6: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
5: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता साथिन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया आज के कार्यक्रम को आरंभ करें हैं ब्रज की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के पाक्षिक विवरण पर कम्मा थे। या को आलेख और वाचन भोलेश्वर उपमन्यु को है।
1: या पखवारे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमन की धूम मची। पुरुषोत्तम मास याई पखवारे में आयवे के चलते समूचे ब्रज 84 कोस में जम के भक्तिरस की बरसात भई। देश विदेश के लाखें श्रद्धालुओं ने 84 कोसीय परिक्रमा लगाई। गोवर्धन, वृंदावन, गहरवर वन, दाऊजी में दिन के अलावा रात में ऊ परिक्रमा लगाई गई। 84 कोस की परिक्रमा हजारन भक्तन ने 4 पहिया, 3 पहिया, 2 पहिया वाहनन ते ऊ लगाई। 84 कोस परिक्रमा मार्ग में भक्तन के संगई वाहनन की लंबी लाइनें लग गईं। 84 कोस परिक्रमा मार्ग, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में उदार मना भक्तन ने जगह जगह सेवा शिविर लगाए। इन शिविरंते भक्तन को भोजन, शरबत, चाय, लस्सी, शीतल दूध, शीतल जल खूब अर्पित कियो गयो। सभी परिक्रमा मार्गन में कहूँ श्रीमद भागवत कथा, कहूँ रामचरित मानस, कहूँ सुंदरकांड, कहूँ हनुमान चालीसा के स्वर गूंज रहे हैं। जगह जगह राधा कृष्ण सीता राम जी की मन मोहिनी झांकियों सजाई गई हतें। मंदिरन में 12 महीना में मनाए बारे उत्सवन को आयोजन याई एक पुरुषोत्तम महीना में संपन्न करवे की शुरुआत है गई है। वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, वर्षाना, बलदेव, महावन, गोकुल, कोकिलावन, भांडीरवन के प्रसिद्ध मंदिरन में खूब सजावट करी गई है। पुष्प बंगला सजाए गए हैं। बड़े मंदिर अनेक तरह के फूलों से महक रहे हैं। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग की लगभग आधी सड़क पे भक्तन की सुविधा के काजें नगर निगम ने बालू बिछवाए देनी है। निगम की तरफ से या बालू को बार बार पानी ते भिगोए के शीतल करवे की कोशिश हो करी जा रही है। जमुना जी की या बालू के जगह जगह उड़वे अपने शरीर पे लिपटवे के चलते भक्त धन्य है रहे हैं। या बालू में बहुत से भक्त लोट के आनंद लूट रहे हैं। बालू और जल छिड़काव की व्यवस्था हैवे के बाद फुटपाथ ज़्यादातर जगह अतिक्रमण से भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिरन क्षेत्र के फुटपाथ अतिक्रमण से मुक्त नए है पाए। वैसे अतिक्रमण हटाओ अभियान खूब चलाए गए पर सफलता अधिक नाए दिखाई देनी है। महान देशभक्त महाराणा प्रताप की जयंती याई पखवारे आई। क्षत्रिय समाज के साथ ही अन्य वर्ग के लोगों ने महाराणा प्रताप जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई। भक्तों ने राणा प्रताप जी को जमके गुणगान कीनो। उन्होंने जगह जगह सार्वजनिक रूप से आयोजन कीने और धूमधाम से शोभा यात्राओं निकाली। यह अवसर पे लोगों ने राणा प्रताप जी की ऊंचे स्वर में जय जयकारों कीनी। मथुरा में मौजूद महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा पे पुष्प चढ़ावे वारेन को तांतो लग्यो। यह स्थान पे स्थित राणा प्रताप पार्क

0: में भक्तान ने उनके दिखाई मार्ग पे चलवे को आह्वान कीनो। भगवान परशुराम उत्सव की धूमों या पखवारे खूब मची। भगवान के भक्त ब्राह्मण समुदाय ने वृंदावन और गोकुल में जबरदस्त शोभा यात्रा निकाली। उन्होंने शोभा यात्रा में अनेक स्वरूपन की आकर्षक झांकी निकाल के दर्शकन को खूब ही मनमोहे। मथुरा के बाद निकाली गई वृंदावन की शोभा यात्रा में जनपद के अन्य स्थानन के ब्राह्मणन ने भाग लीनो। या के बाद कान्हा के गोकुल में जबरदस्त भीड़ के संग शोभा यात्रा निकाली गई। या भक्त शोभा यात्रा को देखवे के काजे हजारें श्रद्धालु थिरके। जोश से भरे ब्राह्मणन ने अपने आराध्य भगवान परशुराम जी की उच्च स्वर में जय जयकार कीनी। बात या अवसर पर वातावरण भगवान की जय जयकार ते भरपूर भयो। या शोभा यात्रा में गोकुल के संग मावन बलदेव मथुरा वृंदावन गोवर्धन वर्षाने राधाकुंड कोसीकला छाता आदि अनेक स्थानन के ब्राह्मणन ने भाग लीनो। भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना वंदना जय जयकार आदि सत्कर्म मथुरा वृंदावन गोकुल के अलावा नंदगांव बरसाने गोवर्धन राधाकुंड माट नौहझील राया बलदेव मावन फरे छाता कोशीकरा छठीकरा सोन आदि जगह खूब भय। वर अमावस्या को पर्व याई पखवारी आयो। या अवसर पे स्वागन महिलान ने अपने पति की लंबी उम्र के काजे वट वृक्षण की पूजा कीनी। उन्होंने व्रत रख के पूजा करवे के पीछे वट वृक्षण की परिक्रमाओं कीनी। या पर्व घर घर मनायो गयो। या अवसर पे गोकुल मावन बलदेव मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाने राधाकुंड कोसीकला छाता आदि अनेक स्थानन के ब्राह्मणन ने भाग लीनो। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना वंदना जय जयकार आदि सत्कर्म मथुरा वृंदावन गोकुल के अलावा नंदगांव वर्षाने गोवर्धन राधाकुंड माट नौजील राया बलदेव सोनई में खूब भयो। हजारन महिला ने अपने घरन में वट वृक्ष की डाली मंगवाए के पूजा कीनी। याई पखवारे मदर्स डे पर्व श्रद्धा भक्ति के संग मनायो गयो। स्कूलन में मदर्स डे की धूम मची। स्कूल प्रबंधन अध्यापकन ने छात्र छात्रान संग माता की महिमा को बखान कीनो। सोशल मीडिया पे बच्चा जवान और उम्र दराज लोगों ने अपनी मातान संग फोटो और वीडियो डाल के माता के काजे अपनी श्रद्धा को जबरदस्त प्रदर्शन कीनो। महान्यायवादी शनिदेव की अमावस्या याई पखवारी आई। या अवसर पे शनि मंदिरन में जबरदस्त भीड़ लगी। भक्तन ने शनिदेव को सरसों के तेल ते अभिषेक कीनो। उन्होंने काले वस्त्र काले उड़द काले तिल चना मिष्ठान आदि अपने आराध्य को अर्पित कीने। या दौरान कोकिलावन शनि धाम मुड़ेसी में भक्तन के मेला लगे। हित हरिवंश प्रभु को 40 दिवसीय उत्सव याई पखवारी आनंद आरंभ भयो। हरिवंश प्रभु की जन्मस्थली बाद ग्राम में महामंडलेश्वर स्वामी लाड़ली शरण महाराज ने स्वामी कमलदास महाराज स्वामी नागरीदास महाराज आदि संग भक्ति भाव ते आयोजित कीनो। या उत्सव में अभिषेक श्रृंगार फूल बंगला सज्जा समाज गायन संत वैष्णव सेवा सखी नृत्य आदि सत्कर्म किए गए।
1: तो भैया आपने सुनो ब्रज की साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों को पाक्षिक विवरण परिक्रमा के अंतर्गत या को आलेख और वाचन रहो भोलेश्वर उपमन्यु को। और आओ भैया अब आनंद लें या ब्रज लोकगीत को।

ब्रजमंडल में या समय अत्यधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा देवी के ताई दर्शनन के ताई अपने इष्ट की आराधना करवे के ताई। आप सब तो जानो ही हो कि पुरुषोत्तम मास विशेष मास होयो करे है, विशेष महीना होयो करे है पूजा आराधना अर्चना के लिए, और या बार ये गर्मिन में पड़े है। लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या पे या गर्मी को कोई असर नहीं दिख रहे हो। या समय या ब्रज मंडल में अत्यधिक भीड़ उमड़ पड़ी है। गोवर्धन की परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा लगाए हुए के ताई दूर दूर तक श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने मनोरथने पूर्ण कर रहे हैं। ठाकुर जी के मंदिरन में या समय विशेष दर्शनन को सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त है रहे है। या एक महीना में पूरे वर्ष पर्यंत पड़वे वाले त्योहारन के दर्शन श्रद्धालुओं को है जामे। काउदिना होली मने, काउदिना दिवाली हुए, काउदिना जन्माष्टमी को उत्सव है रो हुए, तो या तनियाते प्रत्येक श्रद्धालु जब यहाँ ब्रज मंडल में पधारे तो वाय को न को विशिष्ट दर्शन मंदिरन में करवे को मिल जाए। तो हम सबको ये सौभाग्य है कि हम या ब्रज मंडल ते जुड़े भये हैं या ब्रज भूमि ते जुड़े भये हैं, जहाँ अपने इष्ट आराध्य श्री राधा रानी जू और श्री कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन करवे को सौभाग्य हमें प्राप्त हुए। और यदि ये दर्शन हमें नाए हुए तो कैसो मने प्रतीत हुए, ये बताई रही हैं माधुरी शर्मा।

तो अभी सुनियो माधुरी शर्मा के स्वर में आपने ये लोकगीत। और याई के संग घड़ी हमें कर रही है संकेत कि अब समय है चलो है आपते अनुमति लेवी को। पर अनुमति लेवीते पूर्व एक निवेदन, भैया या गर्मी में स्वयं में बचाए वो बेहद आवश्यक है। घर से बाहर निकलते समय ध्यान रखो कि पानी अपने संग अवश्य रखो, ठंडी चीजन को सेवन करो, अपने मूड को हाथन को शरीर के विभिन्न हिस्सों को ढक के घर से बाहर निकलो और यदि संभव है सके तो 12 से 4 बजे के बीच में घर से बाहर मत निकलो। तो यह रही छोटी छोटी सी कुछ विशिष्ट बातें जाते आप स्वस्थ रहोगे मस्त रहोगे। और अब समय है चलो है आपते अनुमति लेवे को, तो स्वीकार करो हमारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: उपाध्याय ने। ये भारतीय पुराविदों के उस समूह में
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ

0: मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में

0: संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, है प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ते की हेडलाइन है आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं।

0: मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया। दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

लता मंगेशकर, आनंद बख्शी, मोहम्मद रफी के युगल सुरों में अभी सुना आपने ये गीत। फिल्म थी चरस, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, अब सुन लीजिए एक विशेष संदेश। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी 25 मई को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75, नंबर एक बार फिर से सुन लें 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप स्त्री संबंधी रोग जैसे मासिक धर्म की गड़बड़ी, पेल्विक दर्द, यूरिनरी समस्याएं यानी कि यूटीआई, पीसीओएस, पीसीओडी, बांझपन आदि समस्याओं के समाधान के लिए जानकारी चाहते हैं तो प्रश्न पूछिए डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल से। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी सुना आपने ये गीत। फिल्म थी हीर राजा। शब्द रचना कैफी आजमी की थी, संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म कारवां में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं आशा भोसले शमशाद बेगम को फिल्म किस्मत में। शब्द SH बिहारी के हैं, संगीत से सजाया है OP नैयर ने।

किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों के सुर में अभी सुना आपने गीत फिल्म थी जानी दुश्मन। शब्द रचना वर्मा मलिक की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब सुनते हैं जंजीर फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने। शब्द गुलशन बाबरा के हैं, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बातचीत जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन। चित्रेश सारस्वत से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: हमारे इस कार्यक्रम में हम कुछ बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की, साथ ही साथ कुछ हिंदू माइथोलॉजी की, अपने समाज और परिवेश की भी बात करेंगे कि पानी को लेकर के कितना प्रबंधन तंत्र पहले रहा, आज रहा और आज क्या हो रहा है, इसमें कितना तकनीकी विकास हुआ है, ये भी बात रहेगी। हमारे साथ है चित्रेश सारस्वत जी।
2: जी नमस्ते
1: जी।
2: जलवायु परिवर्तन मेरे हिसाब से आज की सबसे बड़ी एक समस्या है और हमें उस पर सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, हम सबको उसके ऊपर बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने अपनी स्थायी नौकरी छोड़ी और एक नए प्रकार के परिवेश में जाने की मैंने हिम्मत की और वो था जलवायु परिवर्तन। तो मैंने अपनी दोबारा से पढ़ाई शुरू करी और तब मुझे समझ में आया कि ये ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के सारे देश इससे जूझ रहे हैं। अगर हम कहें तो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर भी इस बारे में बहुत डिबेट्स हैं, बहुत बातें होती हैं और यूएन लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस में भी इसका एक अलग संस्था है जिसे हम UNFCCC बोलते हैं, जिसका काम हर बार ये होता है कि हर साल सारे देश एक साथ बैठें और कैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझा सकें पर बातचीत करें।
1: जी।
2: और जलवायु परिवर्तन सिर्फ हम लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हर प्राणी से जुड़ा हुआ है जो कि इस संसार में सांस ले रहा है या सांस ले रहे हैं, जीवित है बिल्कुल। तो हमें सिर्फ मनुष्यों के बारे में नहीं, हमें जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें बहुत सारी इसके बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। इन मल्टीपल डायमेंशंस का जो एक रिलेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो कि एक के बाद एक कई जगह पर देखने को मिलते हैं।
1: जी जी जी। आपके पास से ये लगा कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि इस संसार में जो जीवधारी है वो सब रह रहे हैं, इसमें आदमी नहीं रह रहा, लेकिन कोई भी जीवधारी जो इस जीवन को जी रहा है या रह रहा है उसमें शायद पर्यावरण को बिगाड़ने में या इसको डिस्टर्ब करने में उसका योगदान नहीं है, उसको बनाने में उसका योगदान है। एक आदमी ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसने थोड़ा छेड़छाड़ की है, तो ये जो विकास की जैसे आज अवधारणा हम कहते हैं कि वो आवश्यक तो है जब हम उन्नत होने की बात करें, लेकिन जो उन्नत हो चुके हैं, आपने जापान की बात की, आपने अमेरिका की बात की, आपने यूरोपियन कंट्री की बात की, तो वहाँ भी ये सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये जो समस्या है जलवायु परिवर्तन की काफ़ी गंभीर हो गई है इसमें। तो जो हो चुका है अब उसको हम दोबारा से उस स्तर पर लाएं जहाँ से हमने इसको बिगाड़ दिया था, तो कैसी कुछ सोच जो है शेयर हो रही है, क्योंकि एक दूसरे को बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे और कुछ काम करने की बात हो रही है, तो किस तरह की तकनीक और व्यवस्था की बात निकल करके आ रही है इन सबके बीच में, थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: जी, जब ये COP21 और ये कई तरीके की जो एग्रीमेंट्स हैं, जब सब देश एक साथ बैठते हैं तो वहाँ पर यही डिस्कशन सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं कि किस तरीके से हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं या सुलझा सकते हैं। तो उसमें जैसे कि जो कंट्रीज जिनके पास ये टेक्नोलॉजीज नहीं है, जिनके पास ये तकनीकी विकास नहीं है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ तो यूरोपियन कंट्रीज सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में काफ़ी आगे हैं, उनकी तकनीक हमसे बहुत बेहतर है और भारत भी काफ़ी बहुत अच्छा कर रहा है पिछले कुछ सालों से। भारत में तकनीकी विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशंस हैं जो कि बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा हैं, तो उनको कैसे इन कंट्रीज में लाया जाए, क्योंकि ये कई सारे दायरों के भीतर होती हैं जिनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो उनसे बाहर हट के हम सबके साथ किस प्रकार इन तकनीकों को साझा कर सकते हैं और उसके बाद कैसे जो हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं उन कंट्रीज में भी किस प्रकार से पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये
1: एक सामूहिक सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की तरफ
2: किस प्रकार से
1: आगे बढ़ रहे हैं। आपने विकासशील देशों की बात की जिसमें भारत भी है और भी

0: बहुत सारे जो एशिया और अफ्रीका के जो कंट्री हैं वहाँ उसकी ज़रूरत हो रही है, तो उसको उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है उस तकनीक को। तो अब जैसे भारत जैसे इसकी बात करें हम, जहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, साधनों पर उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है, और अगर जब हम रेशियो की बात करते हैं तो वो काफ़ी आनुपातिक रूप से बिगड़ा हुआ सा दिखाई देता है। तो एक तरफ भारत जैसे देश को हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन जलवायु भी महत्वपूर्ण है जैसा आप कह रहे हैं। तो उन चीज़ों को पूरा करते हुए कि उनकी बेसिक जो नीड है वो भी पूरी हो जाए, लेकिन आज जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं इन पे भी हमें ध्यान देना है, समाज को उस पर भी चेताना है। हालांकि सामाजिक चेतना इन चीज़ों के तरफ पहले से रही, लेकिन बीच में एक गैप ऐसा आया कि हमने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया, उनसे अपना जो तारतम्य था, उनसे जो जुड़ाव था उसको हम कहीं भूल गए, और आधुनिकता की दौड़ में इतना हम आगे बढ़ गए कि जो हमारा था उसको भूल गए, और जो हमको चाहिए था वो हमारे पास रहा नहीं। तो एक गैप बहुत पैदा हो गया है उसमें। तो भारत जैसे देश में अगर हम बात करें इस काम को आगे बढ़ाने की, तो वो किस तरह संभव होगा उसमें?
1: जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जिसे एक फील्ड है जलवायु परिवर्तन में, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, तो उसमें बहुत रिसर्च हो रही है, और जितना मैं जानता हूँ कई बड़े संस्थानों में इसके अपने ग्रुप बने हुए हैं जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज पे काम कर रहे हैं। लोग कैसे सर्वाइव करते थे उसके ऊपर एक पूरा रिसर्च ग्रुप है कि वो नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो पर्यावरण ने हमें दिया है उसके अनुरूप कैसे रहा करते थे, और हम कैसे नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं जो कि उससे इंस्पायर्ड हों पर्यावरण से। तो इस प्रकार के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं वर्ल्ड में जो कि इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में, क्योंकि हमारा हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास बहुत लंबा रहा है, तो हमारे पास बहुत
0: लॉट ऑफ
1: नॉलेज, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा कदम होगा, साथ ही साथ नई तकनीकों का होना बहुत जरूरी है। पूरा विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हुआ है, बिल्कुल, लेकिन इसकी वजह से ही हम पर्यावरण की जितनी भी समस्या है उनको सुलझा भी सकते हैं। तो हम किस प्रकार से नई तकनीकों को जल्दी से जल्दी अपने परिवेश में समावेश कर सकें और सीख सकें, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारी नदियाँ जो कि पॉल्यूटेड हुई हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि नदी नाले, जितने भी गंदे नाले हैं वो सब नदियों में जा रहे हैं। तो उसके लिए हम अच्छे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, और उन ट्रीटमेंट प्लांट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको कैसे मेंटेन रखें। कई बार बहुत अच्छी तकनीकें लगा दी जाती हैं लेकिन कुछ सालों के बाद वो
0: सर्वाइव नहीं कर
1: पाती हैं। तो इसीलिए किस प्रकार से हम उनको लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगी।
0: जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी जो पुरातन संस्कृति की जानकारी है उसको भी हमें उपयोग में लाना है, और जो आधुनिक उसमें तकनीकी विकास हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है, उन चीजों को भी हमें समाहित करना है, और दोनों का जो मिला जुला रूप होगा तो शायद हम बेहतर कुछ प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम जल की बात आ जाए, आपने बात की कि जब नदियां हमारी जो जीवन धाराएं होती थी, हर सभ्यता का और संस्कृति का विकास नदी और नदी पानी की जो स्रोत है उनके आसपास ही हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, गंगा जमुना की दोआब की बात करें, तो यहाँ जो पॉपुलेशन का जो इतना कंसंट्रेशन है, जो बसाव है, वो शायद इसीलिए कि पानी के बेहतर स्रोत थे, लेकिन उनको चूंकि हम संरक्षित नहीं कर पाए तो वो कहीं कहीं पोल्यूटेड हो चुकी, और आज के संदर्भ में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, हर आदमी सुख सुविधा और जरूरतों के लिए शहर की तरफ भाग रहा है, तो निश्चित तौर पर नदियों पर भी उसका प्रेशर है। अब इसमें जैसे भारतीय संदर्भ में हम जहाँ रह रहे हैं उसमें तो शहरीकरण तो होगा
1: जी,
0: लेकिन आपने बात की कि तकनीकी का भी हमें उपयोग करना है, और हमें जो हमारी पुरानी जो जानकारी थी उसको भी यूज में लाना है। तो मैं थोड़ा सा और हिंदू माइथोलॉजी की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। हम हर चीज को नेचर का जो अंग थी उसको पूज्य मानते थे, उसमें देवत्व तो देखते थे, उसमें हम उसको एक तरह से साकार करते थे कि ये हमको जीवन दे रही है, तो ये जीवनदायिनी हमारे जीवन के संग ही रहेगी उसमें। तो नदियों को पूजना, तालाबों को पूजना, पानी के स्रोतों को पूजना, पेड़ पौधों में जीवन की कल्पना देखना, उनको पूज्य मानना। तो क्या आपको लगता है कि इन चीजों को बढ़ावा दे करके जो आधुनिक तकनीकें हैं उससे हम कुछ ज्यादा बेहतर और जल्दी परिणाम ला सकते हैं, आपको ऐसा लगता है उसमें?
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारी मॉरल वैल्यूज और हमारे आने वाली जनरेशन की मॉरल वैल्यूज को बेहतर बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। बहुत जरूरी है कि हम जिस तरीके से अपने बचपन में मैं नदियों को देखता था, हम नदी को माँ बोलते हैं, गंगा माँ बोलते हैं, यमुना माँ,

0: बोलते हैं, और हम जब यमुना के तट पे जाया करते थे तो वो पानी का आचमन करते थे, उसको पीते थे, लेकिन अभी उस जल को उठा के पीने में एक बार सोचने में आता है कि क्या ये उतना साफ है। तो अगर हम इस बात को मान के चलते हैं कि नहीं, नदियां हमारी माँ है, तो हर इंसान उसमें गंदगी नहीं डालेगा, वो नहीं चाहेगा कि ये नदी गंदी हो। तो अगर इस प्रकार का आचरण, डेफिनेटली बहुत अच्छा कदम होगा जो कि आने वाली जनरेशन को एक
1: कुछ बेहतर हम दे सकते हैं उसमें। चित्र जी, आप तो जापान, चूंकि आज के संदर्भों में हम देखें तो एक विकास के उस पायदान पे है जिसको हम सर्वोच्च क्रम में कह सकते हैं, बहुत ऊंची जगह बैठा हुआ है, वहाँ तकनीकी विकास है, लेकिन क्या आप देखते हैं कि सिर्फ वहाँ क्या तकनीकी विकास ही है, क्या वहाँ इकोनॉमिक विकास ही है, वहाँ के लोगों की जो मोरल वैल्यूज है, अगर अपन अनुशासन की बात करें कि हम भाई आगे तो बढ़ना चाहते, स्वतंत्रता भी हमको चाहिए, लेकिन कई बार अनुशासन को भूल जाते हैं, तो अगर आप वहाँ कुछ बताना चाहें कि आप चूंकि रह के आए वहाँ, तो वहाँ के जो नदियों की बात है, जल स्रोतों की बात है, तो उन्होंने चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ काफी हुआ, तो वहाँ का जो सिनेरियो था वो क्या रहा उसमें, और आज की स्थिति वहाँ क्या है उसमें।
0: जी, मैं भी बहुत इच्छुक था ये जानने का जब मैं वहाँ पहुंचा कि वहाँ की नदियाँ इतनी साफ हैं और वहाँ प्लानिंग बहुत अच्छी है, प्रबंधन नदियों का और पानी का बहुत अच्छा है। और साथ ही मैं जरूर इस बात पर आना चाहूंगा कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखकर। बिल्कुल, तो शुरू में जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि 1960 के दशक में जापान की नदियों का पानी भी काफी पोल्यूटेड हो चुका था, क्योंकि वो लोग वर्ल्ड वॉर टू से बाहर निकले थे और उनको विकास की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार इस बारे में सजग हुई 1960 के दशक में, और उन्होंने एक 30 साल का प्रोग्राम बनाया। उस 30 साल के प्रोग्राम के अंदर अंदर उन्होंने वहाँ की सारी नदियों को साफ कर दिया, जिसका सबसे बड़ा कारण था वहाँ के लोग। पहली बात, वो अनुशासन में रहना इतना पसंद करते हैं कि कभी मैंने कभी ऐसी कोई, वहां पर जो कूड़ेदान भी होते हैं जो कि हमारे घर के पास होते हैं, वो भी अलग 3 प्रकार के होते हैं, इसमें एक गीला कचरा अलग जाता है, सूखा कचरा, और उसके अलावा प्लास्टिक और जो भी कुछ है, और किसी भी प्रकार का मिक्सिंग नहीं होती है कूड़ों की। तो मतलब वो लोग इस लेवल पर, पहले लेवल अपने घर के बाहर जो भी कूड़ा डालेंगे उसमें ही इतना,
1: मतलब वहीं से मैनेजमेंट शुरू हो जा रहा है,
0: वहीं से मैनेजमेंट शुरू हो जाता है।
1: जी जी।
0: फिर नदियों के पास, क्योंकि वहां पर फ्लड यानी कि बाढ़ बहुत आती है, और वहां पर कई तरह की विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो नदियों को भी उन्होंने इस प्रकार से प्लान किया है कि नदी के आसपास का जो एरिया है वो बच्चों के खेलने के लिए मैदान बना दिए हैं, उसके बाहर बड़े बड़े डाइक्स हैं, उन डाइक्स के बाहर ही घर बनते हैं, तो अगर कभी नदी में बाढ़ आ भी जाए या कभी कहीं, क्योंकि बारिश में बाढ़ भी आती है, तो घरों तक पानी पहुंचने से, वो जब पहुंचता है जबकि सिचुएशन एक्सट्रीमली खराब हो चुकी हो, जो कि सरकार क्या भगवान के हाथ में ही होता है मैं कहूंगा, तो ऐसी सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए, और जैसे कि सुनामी के लिए उन्होंने फ्लड वॉल्स बनाई हुई हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, और साथ ही साथ लोगों का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँ, उनका ये अपना आचरण भी ऐसा रहता है कि वो इसको कैसे मेंटेन रखें, वो सरकार की प्रॉपर्टी जो जिसे हम कहें उसे अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, और उसके उतनी ही अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखते हैं। हर एक इंसान परिवर्तन ला सकता है, और हम सबको सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि हम जलवायु परिवर्तन को सीमित कर सकें।
1: जी जी।
0: और हर एक इंसान इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है।
1: चित्र जी, आप आए और हमारे श्रोताओं के साथ जुड़े, अपने संस्मरण और अनुभव उनके साथ बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन। वार्ताकार थे चित्रेश सारस्वत। इनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
1: इटावा के बुद्धा पार्क में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 14 करोड़ लागत से होने वाले 11 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इनको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सरकार के द्वारा महिलाओं को हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। इससे महिलाएं समाज में अपना हक प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड नागरिक सुरक्षा मंत्री व जनपद इटावा के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संसद में नारी शक्ति से जुड़े विधेयकों के विरोध को लेकर कांग्रेस सपा पर तीखा हमला बोला। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि 16 व 17 अप्रैल को संसद में पेश महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुँचाई है। कड़ी मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है, इसे साबित किया है जसवंत नगर की प्रख्या भदौरिया ने। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 में प्रदेश में पांचवा स्थान हासिल कर प्रख्या ने जिले का नाम रोशन किया है। प्रख्या भदौरिया ने 600 में से 582 अंक प्राप्त कर 97% के साथ यूपी टॉप 5 में जगह बनाई। प्रख्या ने बताया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके IPS बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इटावा पुलिस लाइन ग्राउंड में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि DIG हरीश चंद्र ने 483 महिला आरक्षी रिक्रूट की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से DGP और मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुना गया। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने महिला आरक्षियों की लगन और ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए बधाई दी। DIG ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया और ईमानदारी कार्यकुशलता के साथ ड्यूटी करने का मंत्र दिया। इटावा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 1,05,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि जिले में 9,849 स्वयं सहायता समूह एक्टिव हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पंचनद ब्रांड की स्थापना की गई है। इसके तहत 18 सरसॉप और 4 कैंटीन खोली गई हैं, जिन्हें समूह की महिलाएं ही चला रही हैं। पंचनद ब्रांड के अचार, साबुन, फिनाइल, मसाले का उत्पादन हो रहा है। इटावा के विकास भवन में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह और बड़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा गया। विधायक ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि 1,286 शिक्षा मित्रों के खाते में बढ़ा हुआ मानदेय भेज दिया गया है। कार्यक्रम में 10 शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक चेक भी दिए गए। इटावा में यमुना की सफाई पर DFO विकास नायक ने सख्त रुख दिखाया है। जिला गंगा समिति की बैठक में उन्होंने STP चालू न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि 8-9 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, गंदा पानी सीधे यमुना में बह रहा है। उन्होंने आउटलेट का सैंपल जांचने और यमुना के किनारे सफाई के निर्देश दिए। वृक्षारोपण में इमली के ज्यादा पौधे लगाने और ट्री गार्ड से सुरक्षा करने को कहा। भरतना में सभी MRF सेंटर चालू कराने के आदेश भी दिए हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के ऊर्जा बचत अपील को समर्थन दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से कहा कि कार की जगह बाइक, ई रिक्शा या साइकिल से कचहरी आए। दूर से आने वाले वकील कारपूल बनाकर चले। DBA अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सभी वकील अब ऊर्जा बचत से देश की प्रगति में योगदान देंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील का समर्थन करते हुए समस्त वकील जितना अधिक से अधिक डीजल बचाकर राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। हम सब वकील अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल की बचत करेंगे। जो लोग कार से आते हैं वो लोग कारपूल बनाकर चलें अथवा इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। जितना हो सके ऊर्जा को बचाने का प्रयास करें।
1: इटावा में राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने प्रेरणा सभागार में 102 अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया और 10 को बढ़े हुए मानदेय के चेक दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया गया था। राज्य मंत्री ने CM योगी को बधाई दी। लखनऊ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। इटावा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 206 केसों में बरामद 5,774 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने कानपुर देहात के इंसिनेटर प्लांट में वीडियोग्राफी के साथ पूरे मादक पदार्थ जलाए।
3: उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद इटावा पुलिस द्वारा बड़ी एवं उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कुल 206 अभियोगों में बरामद लगभग 5,775 किलोग्राम मादक पदार्थों का नियमानुसार विनष्टीकरण कराया गया। विनष्ट किए गए मादक पदार्थों में

0: अवैध गांजा, डोडा, स्मैक, चरस एवं अफीम तथा अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं।
1: इंसानों के साथ अब जानवर भी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बब्बर शेरों के नाइट सेल में खस की चटाई और डेजर्ट कूलर लगे हैं। ब्रीडिंग सेंटर में शेरनी और सावकों के लिए एयर कंडीशनर चल रहे हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि क्रॉल और सफारी क्षेत्र में फॉगर सावर से तापमान कम किया जा रहा है।
2: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव है उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं, तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
1: गर्मी को देखते हुए सफारी का समय भी बदला गया है। सुबह 6:30 बजे से पर्यटकों के लिए सफारी खुल रही है ताकि दोपहर की धूप से बचा जा सके।
3: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
4: जनपद हमीरपुर में पिछले 3-4 दिनों में गर्मी ने 6 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 मई को 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही उल्टी दस्त डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेज गर्मी के कारण सड़कों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के वक्त बाहर न निकलें, बाहर का खाना न खाएं, घर का बना ताजा भोजन ही करें। सत्तू, बेल का शरबत, आम का पना, नारियल पानी और फलों का जूस आदि का सेवन अधिक करें। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना है। जनपद हमीरपुर के सर्राफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि गोल्डन मोटरनाइजेशन स्कीम को आकर्षक बनाया जाए, घरों में रखी पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकिल कर नई ज्वेलरी बनवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुलियन व बार की खरीद को कुछ समय के लिए टाला जाए। व्यापारियों ने अपने इस सुझाव से संबंधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को फिर से पोस्टपेड करने के आदेश का जनपद हमीरपुर के लोगों ने स्वागत किया है। इस फैसले से उपभोक्ता खुश हैं, क्योंकि अब आए दिन बिजली कटने की समस्या से उपभोक्ताओं को जूझना नहीं पड़ेगा। अधीक्षण अभियंता ज्ञान चंद यादव कहते हैं कि सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड करने का सरकार ने निर्णय लिया है। करीब 1 सप्ताह में ही सभी मीटरों को पोस्टपेड में बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर हर माह का बिल भेज दिया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका भी मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है वह मीटर अकाउंट में अपना नंबर जरूर पंजीकृत करा लें। जनपद हमीरपुर के संचालित 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नौनिहालों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पका हुआ ताजा व पौष्टिक आहार परोसने का सरकार ने निर्णय किया है, जिससे अब केंद्रों में सूखा पुष्टाहार वितरित नहीं किया जाएगा, बल्कि नौनिहालों व प्रसूताओं को आटे बेसन का हलवा, बर्फी तथा स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई जाएगी। इससे 6 माह से 3 माह के सामान्य बच्चों को शिशु अमृत व शिशु आहार के तहत आटा बेसन का मीठा हलवा और 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों को बाल पुष्टकर के रूप में आटा बेसन की मीठी बर्फी और नमकीन दलिया व मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहत में सुधार की ओर एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इससे राशन की कालाबाजारी आदि में भी रोक लगेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सभी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को ताजा व पौष्टिक पोषाहार खिलाया जाएगा। अब सूखा दाल, दलिया, पंजीरी, रिफाइंड आदि का वितरण नहीं होगा। इस माह सभी ब्लॉकों में नेफेड द्वारा राशन सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सप्ताह में एक दिन शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चे श्रमदान करते हुए दिखाई दें तो इसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत न किया जाए। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गर्मियों के अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाएगा। उस दिन सभी शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में अनुशासन और स्वच्छता की भावना विकसित होगी। अभियान के तहत जो स्कूल स्वच्छ और सुंदर होंगे उन स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आबोहवा के अंतर्गत वार्ता, जल संरक्षण के उपाय। वाचन कर रहे हैं विष्णु प्रकाश शर्मा।
6: श्रोताओ आज

0: निसंदेह जल ही जीवन की महती आवश्यकता है। यदि पृथ्वी पर जीवन का मूल कारण जल की उपलब्धता है तो जीवन के संरक्षण के लिए जल का संरक्षण भी अनिवार्य है। पिछले कुछ दशकों से जल की समस्या विकट होती जा रही है। इसका कारण यह नहीं है कि जल कम अथवा समाप्त हो रहा है, अपितु बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगीकरण, वाष्पीकरण और जल प्रदूषण से बड़ी मात्रा में जल संकट के लिए उत्तरदायी हो गए हैं। जल का दुरुपयोग भी जल की कमी उत्पन्न कर रहा है। ये समस्याएं तो सामने दिखाई दे रही हैं, इनसे भी कई गुना गंभीर समस्याएं अन्य भी हैं। यदि प्रकृति की ओर देखें तो जहां एक ओर प्रतिवर्ष पृथ्वी पर वर्षा का जल घटता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी के भीतर जल भंडार का अधिक से अधिक दोहन व शोषण किया जा रहा है। जल के उचित प्रबंधन का अभाव हमारे दैनिक जीवन में जल की कमी का एक प्रमुख कारण है। जल का प्रबंधन, संग्रहण, संरक्षण, बचाव कैसे किया जाए, ये वर्तमान शताब्दी की प्रमुख चुनौती है। जल संसाधनों का नियोजन एवं प्रबंधन एक जटिल कार्य है, क्योंकि जल के प्रयोग एवं उपभोग के स्तर पर अनेक प्रकार के अभिकर्ता अंतर्ग्रस्त होते हैं। इनके लक्ष्य, परिवर्त्य और प्रेरणाएं विविध होती हैं और पर्यावरणीय चिंताओं का स्तर भी भिन्न होता है। कृषि, उद्योग, घरेलू वितरण और उपभोग से लेकर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और मनोरंजन के साधनों के रखरखाव तक जल संसाधनों के प्रयोग में जो क्रियाएं, संस्थाएं एवं अभिकरण प्रत्यक्ष तौर पर परस्पर अंतरक्रिया करती हैं, वे अनेक हैं। अतः जल का समेकित प्रबंधन एवं संग्रहण आवश्यक है, ताकि जल के प्रयोक्ताओं के बीच प्राकृतिक विवादों को कम किया जा सके एवं नए नियमों और प्राथमिकताओं को प्रतिस्थापित किया जा सके। प्राचीन काल से ही भारत में जल संचयन की परंपरा रही है। कुएं, बावड़ियां, तालाब, कुंड आदि के माध्यम से जल का संचयन होता आ रहा है। आधुनिक जल संचय प्रणाली के होते हुए भी पारंपरिक जल संचयन प्रणाली आज के युग में भी पूर्णतया उपादेय है। वर्तमान में भारत के कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 180 अरब घन मीटर है, जो देश में उपलब्ध कुल जल की संभाव्यता का मात्र 10% ही है। देश की अर्थव्यवस्था में भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूजल का दोहन सीधे उपभोक्ताओं के नियंत्रण में होने से यह विभिन्न उपयोगों के लिए प्राथमिक साधन बन गया है, जिसके की कई स्थानों पर विवेकपूर्ण उपयोग भी नहीं किया गया है, जिससे समुचित मात्रा में जल उपलब्ध कराना कठिन हो रहा है, क्योंकि अनावश्यक दोहन होने से स्थिति विकट हो गई है। भूजल स्तर में गिरावट चिंता का विषय है। भारत में सभी जगह पर यह स्तर निरंतर घटता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के चलते पृथ्वी के गर्म होने से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। इससे पानी की उपलब्धता कम होती जाएगी। वर्षा तो अधिक होगी, लेकिन वह इतनी शीघ्रता से होगी कि बाढ़ें आएंगी, पानी बह जाएगा, जिससे भूमि के नीचे पानी कम पहुंचेगा, क्योंकि जल की मात्रा में वृद्धि करना संभव नहीं है। अतः उपलब्ध जल का सही प्रबंधन ही एकमात्र उचित विकल्प है। वर्षा जल का संग्रहण ही एकमात्र सबसे अच्छा विकल्प है। वर्षा जल का संग्रहण जल के अभाव को समाप्त करने का एक प्रभावी साधन हो सकता है। इसके अंतर्गत वर्षा जल के संचयन की विभिन्न तकनीकों को अपनाकर वर्षा के जल को छतों पर रोककर जल स्रोतों में भेजा जाता है। अध्ययनों के अनुसार यदि 1 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो 1000 वर्ग फुट की छत से लगभग 1000 लीटर जल बहकर निकल जाता है। यदि सभी लोग ऐसे उपाय कर जल संग्रहण करें तो जल संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता मिल सकती है। वर्षा के जल के संग्रहण से भूजल भंडारण में वृद्धि, भूमि जल गुणवत्ता में सुधार एवं भूजल के प्रदूषण को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे जल स्तर में गिरावट पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और जल के सतही बहाव से होने वाली समस्याओं जैसे जलाक्रांता, नालों का भरकर रुक जाना इत्यादि को भी कम किया जा सकता है। साथ ही वर्षा जल के संचयन से जल की उपलब्धता बढ़ाने में भी सफलता मिलेगी, विशेष तौर पर वहाँ जहाँ जल की पर्याप्त आपूर्ति है होती है अथवा सतही संसाधनों का अभाव है। बाढ़ की आपदा भी इस प्रक्रिया से कम होगी। स्वतंत्रता के बाद से अनेक बड़े बांधों का निर्माण किया गया है और हो रहा है, जिससे नदी घाटी परियोजनाओं से अनेक लाभ हुए हैं। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनता के सहयोग से जल के प्राचीन स्रोतों को पुनः विकसित करना आवश्यक है, तभी भारत जैसे विशाल तथा विविधतापूर्ण देश की जल आपूर्ति की समस्या का निदान संभव हो पाएगा।
1: आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता जल संरक्षण के उपाय, वाचन कर रहे थे विष्णु प्रकाश शर्मा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रही हैं सुरभि शर्मा।

सुप्रभात श्रोताओं, करते हैं एक नई शुरुआत एक नए उमंग और नए उत्साह के साथ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस समय भीषण गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा मन बहुत परेशान है, इस गर्मी में क्या करें और ना क्या करें, कुछ भी करने का मन नहीं करता, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे में जो गीत संगीत है वो हमारे मन को एक ठंडक प्रदान करता है। जब हम गीत और संगीत सुनते हैं ना, चाहे हम कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, उस संगीत की लय में खो जाते हैं, उस गीतों के बोल में खुद को महसूस करते हैं। गीतों के बोल जो कहते हैं वही हमें अपने मन की व्यथा कथा लगती है। उस मन के जो भाव हैं उन गीतों के भावों के साथ हम जोड़ने लगते हैं। अगर आप भरी सर्दियों में कोई पानी से भरा हुआ या पानी के बोलों वाला गीत देखेंगे या सुनेंगे तो आपको भी ठंड का एहसास होने लगता है। ऐसे में वहीं दूसरी तरफ आप भीषण गर्मी में कोई ऐसा गीत सुने जिसमें ठंडी पुरवाई की बातें हों, ठंडे पानी की बातें हों, तो ऐसा लगे कहीं ना कहीं मन को एक ताज़ी हवा का झोंका हिलाकर डुलाकर चला गया। आइए सुनते हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए ये प्यारा सा गीत।

0: गर्मी का मौसम चरम सीमा पर है, ऐसे में कई तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। लू की समस्या हो गई, गर्मियों में डायरिया भी हो जाता है, कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो किस प्रकार अपनी देखभाल करें, क्या खाएं, क्या पिएं, इसके बारे में विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मयंक सरस्वत।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि विदित है, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मियों में जो इस वक्त अगर अपने सेहत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, इन गर्मी के सीजन में जितना हो सके अगर हम धूप से परहेज करें तो बेहतर है। गर्मी के टाइम पे बच्चे, खासकर बुजुर्गों को घर से बाहर दोपहर में आना जाना हम जो हैं वो ना करें। जितना हो सके अपना सुबह या शाम में अपना काम निपटा लें तो जो सीधी गर्मी का प्रकोप है उससे हम बच सकते हैं। दूसरा, जितना हो सके हमको तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसे में जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, लस्सी है, नींबू पानी है, अपने शरबत हैं, इनका उपयोग करते रहेंगे तो जितना भी हमारा पसीने के रूप में पानी का ह्रास होता है हमारे शरीर से, उसकी हमारी पूर्ति होती रहेगी और पानी कमी ना होने से हमारे शरीर में जो हीट स्ट्रोक या लू लगना जिसको बोलते हैं उसकी भी संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा, भोजन के रूप में अगर हम देखें तो जितना हो सके हम लोग को फलों का सेवन करना चाहिए। इस समय ये बड़ा प्रकृति की देन है कि जो भी फल गर्मियों में आते हैं वो सबसे ज़्यादा रसीले होते हैं, चाहे आम हो, खरबूजा हो, तरबूज हो, ये सारे फल जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर लवणों की, नमक की और पानी की कमी की पूर्ति भी करते हैं और हमको ठंडक भी प्रदान करते हैं। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जितना हो सके खाना उतना ही बनाएं जो हमारे भोजन में उपयोग हो जाए, बासी या रखे हुए भोजन को ना करें, इससे हम अपनी फूड पॉइजनिंग और दस्त की संभावनाओं से बच सकते हैं। साफ़ सफाई का ख्याल रखें और ताज़ा खाना ही खाएं। और दूसरा, अगर कभी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि हम किसी कारणवश बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय तुरंत चिकित्सक की परामर्श लें। दस्त या उल्टी के परिप्रेक्ष्य में मेरा ये है कि घर में नींबू पानी या ORS का घोल जरूर रखें। सरकारी अस्पतालों में ORS का जो है, आपको WHO ORS जो है मुफ्त रूप में प्राप्त हो जाता है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और एक या दो पैकेट ORS का घर में जरूर रखें। यदि ORS ना हो घर में मौजूद

0: तो ऐसी परिस्थिति में नमक और चीनी का घोल बनाकर तत्काल दस्त से पीड़ित जो भी मरीज है, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या कोई एडल्ट हैं, उनको देना शुरू करें, जिससे शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो और जो बीमारी है वो ज़्यादा गंभीरता से ना फैले। उसके बाद अपना चिकित्सीय परामर्श लेके इलाज करें। जहाँ तक लू लगने का सवाल है, लू में अक्सर करके अगर मैं एक आम बोलचाल में समझाऊँ कि शरीर के अंदर जो पानी होता है वो हमारा पसीने के रूप में हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि हमारे शरीर में पानी इतना कम हो जाता है कि हमारे शरीर को ये लगता है कि अब पानी का अगर हम पसीने के रूप में नुकसान करेंगे तो हमारे शरीर की जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित हो जाएंगी, तो ऐसे में हमारा शरीर जो है पसीना निकालना भी बंद कर देता है, जिससे कि जो तापमान को नियंत्रित करने की हमारी प्रणाली है वो एक तरीके से बंद हो जाती है, और इसी को हम हीट स्ट्रोक या लू लगना कहते
1: इसके
0: हैं।
1: लक्षण क्या है? कैसे पता चले किसी को लू लग गई?
0: पसीना नहीं आएगा, इसके लक्षण है जैसे पसीना नहीं आएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, चक्कर भी आ सकते हैं, बेहोशी भी हो सकती है। मेन चीज़ है कि पसीना नहीं आएगा, पसीना बंद हुआ तभी लू। अगर पसीना आ रहा है तो लू लगने की संभावना नहीं होती, इसका मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं है। जो हमारा एक हमारे शरीर का जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो पसीने से काम करता है। पसीना आता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब बुखार लगता है हम बुखार की गोली खाते हैं तो पसीना आता है, और कहते हैं पसीना आने के बाद हमारा शरीर जो है वो बुखार ख़त्म हो जाता है या टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। इसी प्रकार से हम गर्मी में ही एक हमारे शरीर की एक नेचुरल एक्टिविटीज़ है कि हम पसीना निकालते हैं, पसीना एवेपोरेट होता है, उससे हमारी बॉडी ठंडी होती है। लू लगने में अक्सर ये होता है कि हम जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो अत्यधिक गर्मी है, पसीना हमारा निकलता जा रहा है, लेकिन हमने उसके परिप्रेक्ष्य में पानी नहीं लिया। जितना पसीना हमारा निकला उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए हमें पानी पीते रहना चाहिए, बाहर भी जाएँ तो पानी पीते रहें। अगर ऐसी स्थिति में हम पानी नहीं पिएंगे और पसीना निकलता रहेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी के बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता, तो वो हमारी बॉडी जो है वो फिर अपने अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए पानी को भी प्रिजर्व करने लगती है और पसीने में भी पानी को नुकसान नहीं होने देती, तो वो हीट का जो मैकेनिज्म है वो बंद हो जाता है, बॉडी एक तरीके से ओवर हीट हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में हमारे ब्रेन को और शरीर को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसका सीधा समुचित इलाज है कि जैसा भी हो सके हमें पानी तो पीना ही पीना है। अगर कभी किसी को लू लग भी जाती है या इस तरीके के लक्षण आ भी जाते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उनके शरीर को हम ताज़ा पानी से या ठंडे पानी से खूब अच्छे से धोएं, खूब जितना हम उनके ऊपर पानी डाल सकते हैं उतना पानी डालें। घरेलू उपाय है ये कि बॉडी जो है हमारी ठंडी होनी चाहिए। अक्सर करके होता है कि जब बुखार आता है या कोई गर्म होता है शरीर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा है, शहरी क्षेत्रों में भी देखा है कि अमूमन एक बात होती है कि आदमी को अगर ठंडी लग रही है तो उसको कपड़े से उड़ा देते हैं। कपड़ा ना उड़ाएं, उसको पानी से, जैसे ठंडे पानी की पट्टियां रखी जाती हैं उस तरीके से उसके सिर के ऊपर से पानी डालें खूब ढंग से, क्योंकि हमारा जो सबसे कीमती जो हमारा अंग है वो हमारा दिमाग है। अगर दिमाग में अगर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो जो ब्रेन को अगर डैमेज हो गया तो हमारी बॉडी परमानेंटली डैमेज हो सकती है, तो इसलिए सबसे पहले हम अपने सिर के ऊपर से पानी खूब अच्छे से नहलाएं उसको, जिससे कि उसका बॉडी जल्दी ठंडी हो जाए, और एक बार पुनः जब पसीना आने लगेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं
1: इसलिए
0: आएगी।
1: कहा जाता है हमेशा ढककर चलें।
0: हाँ, सर को ढक के चलें, धूप डायरेक्ट धूप में जाने से बिल्कुल बचाव रखें, खास करके बच्चों और बुजुर्गों का। तो बिल्कुल बहुत असंभव हो कि भाई नहीं, संभावना है कि कार्य नहीं हो पा रहा है, तभी धूप में निकलें, नहीं तो हम लोग भी अगर धूप को परहेज करें, धूप को छोड़ते हुए ठंडे समय में अपना काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है।
1: एक डायरिया की समस्या भी इस मौसम में काफी देखी जाती है।
0: डायरिया की समस्या भी, लक्षण यही है कि आपको डायरिया में लक्षण तो दस्त ही है, अगर आपको नॉर्मल से ज्यादा दस्त हो रहे हैं, पतली लैटरिन आ रही है, उल्टियाँ भी आती हैं, और ये अधिकतर जो है हमारा दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से आती है या बासी रखा हुआ, क्योंकि गर्मी बहुत है तो कीटाणु बहुत जल्दी पनप जाते हैं। खाना है अगर हमने उसको गर्मी में रख दिया है, ऐसे में आप देखेंगे दूध भी बहुत जल्दी फट जाता है, तो हर चीज़ का एक टाइम है, अगर उस टाइम से देर से अगर हम किसी खाने पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो वो जो है पेट में जाके इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, और हमारी बॉडी का एक नेचुरल फिनोनमा है कि हम किसी भी इन्फेक्शन को अपनी बॉडी में रहने नहीं देते। अगर कोई गंदा पदार्थ हमारे शरीर में आ भी जाएगा तो हमारी बॉडी जो है उसको निकालने का चेष्टा करती है, इसी रूप में हमें दस्त या उल्टी होने लगती हैं। दस्त और उल्टी में हमें दस्त और उल्टी से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत शरीर में पानी और लवण के कम होने की है, तो ऐसे में दस्त और उल्टी के बारे में हम लोग ज़्यादा विचार कर लेते हैं और पानी पिलाने के बारे में विचार नहीं करते। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो घर में सबसे पहले यह है कि ORS का घोल जो है वो देना शुरुआत कर देना, या नमक पानी

0: का घोल जो है देना शुरू कर दें, उसके साथ में चिकित्सीय परामर्श लें, अपना इलाज कराएं, क्योंकि पानी की समस्या अगर कमी हो गई शरीर के अंदर तो ये जानलेवा हो सकती है।
1: इस मौसम में लोग अक्सर घूमने का बड़ा प्लान करते हैं, गर्मी अपनी चरम सीमा पे, तो क्या सलाह देना चाहिए सभी लोगों
0: को? देखिए, घूमने जाने में कोई एतराज नहीं है, आप अच्छे से घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप अत्यधिक ठंडी जगह पे जा रहे हैं और फिर अचानक से ही आप, जैसे अक्सर ये होता है कि हम गाड़ी से या किसी से जा रहे हैं तत्काल, तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और वहाँ जाके कहीं हिल स्टेशन पे चले गए, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये फ्रिक्वेंट टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं इससे भी हमारी बॉडी में कई तरीके की सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, उनसे बचें, अपना घूमने का भी आनंद लें और प्रकृति का भी आनंद लें।
1: क्या क्या चीज़ें खानी पीनी चाहिए इस मौसम में?
0: खाने पीने में जो भी इस समय सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, प्रकृति ने खुद इस तरीके से फलों को बनाया है कि गर्मी में जो फल खाने चाहिए वो गर्मी में ही आते हैं, तो तरबूज है, खरबूज है, इनका सेवन करना चाहिए, आम है, बाकी केला है, बहुत अच्छा है, पपीता बहुत अच्छा है, लेकिन पपीता दस्तावर होता है तो उसको देख के खाएं, ज़्यादा दस्त हुए तो आपको शक हो जाएगा कि मुझे कहीं डायरिया ना हो गया हो, तो उस चीज़ों को देखते हुए अपना सेवन कर सकते हैं, पर पानी का खूब
1: प्रकार ध्यान रखना चाहिए, क्या पानी हमेशा उबाल के पिए या आरओ का पानी ही सर्वश्रेष्ठ है, पानी का क्या, किसी पानी से अधिकतर बीमारियां पानी से ही फैलती
0: हैं? देखिए, पानी अगर स्वच्छ है, हमारे पानी का स्रोत अगर सही है, तो हम अपना नल का या भूगर्भीय जल जो है, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये शक है कि हमारा पानी जो है वो उतना शुद्ध नहीं है, तो आरओ का पानी हो गया, या आपका अगर आप सादा पानी भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्लोरीन की गोली डाल सकते हैं, आप उसको उबाल कर ठंडा कर सकते हैं, अगर कोई बच्चे हैं, बीमार हैं, खास करके डायरिया के मरीज हैं, तो उस ऐसी परिस्थिति में आप उसको उबाल कर ठंडा कर तभी पानी दें तो बेटर है, क्योंकि उससे सारे कीटाणु मर जाते हैं और पानी एकदम शुद्ध हो जाता है।
2: ठंडे ठंडे पानी से

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर जो तय किया उसमें नित नए आयाम स्थापित किए हैं। आइए सुनते हैं ये एक उपयोगी जानकारी।

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। जिला अस्पताल में बनाया विशेष वार्ड, गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जिला अस्पताल में विशेष वार्ड तैयार किया गया है, जहां मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्मी के कारण जिला अस्पताल में डिहाइड्रेशन, चक्कर, उल्टी, बुखार और हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने विशेष वार्ड में अतिरिक्त बेड, दवाइयां, मेडिकल स्टाफ की तैनाती की है, ताकि मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। परिसर में लोगों को राहत देने के लिए विशेष ORS कॉर्नर बनाया गया, जहां मरीजों को तीमारदारों को निःशुल्क ORS घोल उपलब्ध कराया जा रहा है। वार्ड में कूलर AC की व्यवस्था भी की गई है। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में बनाए गए इस विशेष वार्ड से परिजन और उनके मरीजों को काफी राहत

मिल रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय रखा गया है। अब डालते एक नज़र आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। हर दिन अपने आप में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटनाएं समेटे रहता है। आज ही के दिन 1984 में बचेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आज ही के दिन 1949 में पश्चिम जर्मनी का नया संविधान लागू हुआ और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। वहीं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की खुफिया सेवा के प्रमुख हेनरिक मिटलर ने ब्रिटिश हिरासत में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं 1995 में जावा प्रोग्रामिंग भाषा का पहला संस्करण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। वहीं कछुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई थी। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि क्या करे क्या ना करे के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास, क्योंकि हमारे अंदर होती जागरूकता की कमी। अगर हम जागरूक हैं, सतर्क हैं, तो छोटी से छोटी बात का जब ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी का प्रकोप चारों तरफ जारी है और हमने अपने पूरे कार्यक्रम में इस गर्मी से बचने के उपायों के बारे में आपको जानकारी दी, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों हुई इसके बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयास हमें करने होंगे, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो हमारी पृथ्वी धधकती जा रही है, गर्म होती जा रही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गर्म आग का गोला बन के रह जाए, जिससे कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने का प्रयास जरूर करें। जब आप सोसाइटीज़ में रहते हैं, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं या बिजनेस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर ज़मीन कम होती है, तो वहाँ पर ऐसे पौधे लगाने का प्रयास करें जो आगे बढ़कर ऐसे आपके जलवायु आपकी मेंटेन करके रखें और आपको ऑक्सीजन प्रदान करें। अपने आसपास ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो आपकी वायु को शुद्ध करें और कहीं ना कहीं गर्मी को रोकने का प्रयास करें। हमेशा हम यही शिकायत करते हैं हमारे पास ज़मीन की कमी है, हम क्या करें हम क्या ना करें, लेकिन आज के समय में टेक्निक और जानकारी इतनी अच्छी मौजूद है कि आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेड़ पौधे लगाए और उन्हें लगाकर छोड़ दिया। चाहे आप एक वृक्ष पौधा लगाएं, लेकिन उस पौधे को लगाने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी लें जब तक वो वृक्ष ना बन जाए। एक मुहिम भी चली हुई है एक वृक्ष माँ के नाम। जब हम अपनी माँ के नाम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं ताकि वो पुष्पित और पल्लवित होकर एक बड़ा वृक्ष बन जाए। बरगद का पेड़, नीम का पेड़, कदम का पेड़, ये ऐसे वृक्ष हैं जो कहीं ना कहीं न केवल हमें छाया प्रदान करते हैं बल्कि हमें स्वच्छ जलवायु भी प्रदान करते हैं। अगर कहीं आसपास हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो बड़े वृक्षों को काटा जा रहा है, तो उसका तत्काल विरोध करें। आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य आपके आने वाले समय को न केवल उज्जवल बनाएगा बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी बनाएगा। इस मौसम में, इस गर्मी में हम चाहे कितने भी एसी लगा लें, कितने भी ऐसे उपाय कर लें, 10 कूलर लगा लें, 10 एसी लगा लें, लेकिन अगर हमारे आसपास जलवायु नहीं है, वृक्ष नहीं है, तो ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। बिजली का संकट आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ चुका है, और छोटी छोटी बचत ज़रूर करें। जब आपको ज़रूरत नहीं हो तो बिजली का प्रयोग ना करें, अपने घर के स्विच को ऑफ रखें, जल का भी उपयोग बहुत सीमित तरीके से करें, अपने नलों को बंद रखें। जहाँ कहीं आपको दिखता नल की टूटी टूटी हुई है या कहीं पाइपलाइन में लीकेज है तो उसको भी ठीक करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, जागरूक रहेंगे, तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण, फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसकी देखभाल ज़रूर करें, किसी भी रूप में लगाएं। बड़े बड़े गमले में भी आज के समय में बरगद के, पीपल के वृक्ष लग सकते हैं। प्रयास कीजिए, प्रयासों से ही संभव है कि हम अपने आने वाली स्थिति को बदल सकें। प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें, और इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रही थी सुरभि शर्मा, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अतुल देसाई का राग विभाष ललित में निबद्ध ख्याल गायन। तबले पर संगत दिनेश चंद्र बनर्जी और सारंगी पर संगत हरिबाबू कौशिक की है।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अतुल देसाई का गायन। तबले पर संगत दिनेश चंद्र बनर्जी की थी, सारंगी पर संगत रही हरिबाबू कौशिक की। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है रूपक फूल रहे और रस केवड़ा। आलेख और प्रस्तुति मोहन स्वरूप भाटिया की है।

ब्रज कलश रूपक श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए आकाशवाणी मथुरा वृंदावन द्वारा तैयार ब्रज लोक गीतों पर आधारित रूपक फूल रहो रस केवड़ा। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं।

0: लोकमानस की सहज अभिव्यक्ति का प्रतीक है लोकगीत। बीते युग की कहानी कहते हैं लोकगीत।
1: लोकगीत हमारे आदिकाल का इतिहास है, ऐसा इतिहास है जो ताम्रपत्रों या ग्रंथों में नहीं, कोटि कोटि लोक कंठों में विराजमान है।
0: लोकगीत हमारी संस्कृति की थाती है, अनमोल निधि है। लोकगीतों में लोक जीवन का प्रतिबिंब है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक फैले इस विशाल देश की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं नहीं,
0: इनमें ब्रजभूमि की परंपराओं का विशिष्ट स्थान है।
1: ब्रजभूमि है राधा और कृष्ण की जन्मभूमि, लीला भूमि।
0: नटनागर मुरली मनोहर की मधुर मुरलिका और राधा के नुपुरों की रुनझुन रुनझुन के स्वर।

0: आज भी ब्रज के कण कण में अनुगुंजित हैं।
1: अनुगुंजित हैं राधा कृष्ण की माधुर्यमयी लोकरंजनी लीलाएं।
0: इन लीलाओं ने ब्रज के कुंज निकुंजों, लता पताओं, चर अचर, प्रकृति पुरुष सभी को रस सिद्ध किया है।
1: रसराज श्री कृष्ण और रस साम्राज्ञी राधिका के अनन्य प्रेम, माधुर्य, समर्पण, श्रृंगार और करुणा की रसधारा ब्रज के लोकगीतों में प्रवाहित है।
0: ब्रज के लोकगीतों की यह अन्यतम विशेषता है कि घर में बालक का जन्म होता है तो उसमें कृष्ण के दर्शन कर गाया जाता है।

0: विवाह का अवसर हो तो लगुन भी आती है कृष्ण की। आज किशन हरि की लगुन जो आई।
1: और विवाह में बारौठी के अवसर पर गाली गीत में कृष्ण बलराम को संबोधित कर ये गाया जाता है।

और होली में तो रस रंग से सराबोर हर प्रजांगना राधा पुरुष श्री कृष्ण बन जाता है।

0: जीवन का प्रारंभ होता है जन्म से, किंतु लोकगीतों का जन्म हो जाता है जन्म लेने से भी पूर्व।
1: विवाह के पश्चात पुत्र कामना संबंधित सोहर गीत गाया जाता है। गर्भाधान होते ही पति पत्नी चौक पर बैठकर साथ पूजन करते हैं, तब भी गीत गाए जाते हैं।
0: जन्म लेने से पूर्व पहले महीने से नौवे महीने तक की पीड़ा और गर्भवती द्वारा विभिन्न वस्तुओं को खाने की इच्छा का वर्णन भी लोकगीतों में किया गया है।
1: जन्म के पश्चात भी गीत गाए जाते हैं और उनमें ननद द्वारा नेग मांगने और बधाइयों का वर्णन रहता है। इसके पश्चात जंती गीतों की तो लंबी श्रृंखला बनी रहती है।
0: जन्म के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। कन्या और वर पक्ष में संबंध तय होते ही सगाई, लगुन, भात नोतने, हरधार, रत जगा, घूरा पूजन, निकरौसी, कन्या पक्ष के यहाँ बारात पहुँचने, बढ़ाव और विदा से लेकर
1: बहु नचाने तक के गीतों की गूंज बनी रहती है। विवाह के जितने भी संस्कार उससे भी अधिक गीत दिन भर और रात्रि में भी ढोलक की धमक, मंजीरों की खन खन।
0: संस्कारों के साथ तो गीत अभिन्न रूप से जुड़े ही हुए हैं, किंतु बजांगनाएं तो लगता है कि हर समय गाती ही रहती हैं।
1: लगता है कि गीतों की ललक हर समय उनके हृदय में उमड़ती रहती है। भोर होते ही घर में झाड़ू लगाते हुए प्रभाती के रूप में बुहारी गीत गाया जाता है।

0: राधा कृष्ण के निश्चल प्रेम प्रतीति की भूमि है ये ब्रजभूमि। यही कारण है कि ब्रज की माटी में माधुर्य की महक है।
1: चंदा की चांदनी में गांव के पनघट पर किसी अनजान अपरिचित युवक द्वारा एक सुंदर कन्या से यह प्रश्न पूछा गया।

0: क्या विश्व की किसी भाषा का कोई कवि इस कोमल प्रश्न की सहज अभिव्यक्ति कर सका है?
1: ब्रजबालाओं के तन मन में श्रृंगार रस का सागर लहराता है।

ब्रज लोकगीतों की एक अन्यतम विशेषता यह भी है कि अति श्रृंगारिक गीतों को भी शालीनता के साथ सांकेतिक रूप में परोसा गया है।

0: फागुन के मतमस्त महीने और होली के दिनों में ब्रज के छैला युवक किसी ब्रजवाला को देखकर मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं,
1: पर एक टीपदार आवाज में मात्र एक पंक्ति के द्वारा कह उठते हैं,

0: से बोल बखत कट जाएगो, ना जाने को कितको रम जाएगो। इस दार्शनिक सिद्धांत के पक्ष पर ब्रजवासियों का स्वभाव हास परिहास और माधुर्यमय रहता है
1: और इसका प्रभाव ब्रज के लोकगीतों पर भी छाया हुआ है।
0: जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले जच्चा गीत में जच्चा बिचारी बड़ी भोली भाली है, सांप को मारकर बगल में और बिच्छू को सिरहाने रखकर सोती है, किंतु मच्छर से डर जाती है।

0: टेसू खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे ये गाते हुए हंसाते हैं।
1: अरे मेरो टेसू यही अरो खावे कुमांगे दही बड़ो।
2: और बालिकाओं द्वारा झांझी खेलते समय गाए जाने वाले गीत भी हास्य विनोद उत्पन्न करते हैं।

0: ब्रज लोक गीतों के विविध रूप हैं, विविध रंग हैं। कुछ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें नृत्य के साथ गाया जाता है।
1: इन्हें नृत्य गीत कहा जा सकता है। इन गीतों का वैभव नृत्य से और नृत्य का वैभव गीतों से मुखरित होता है।

0: गीत चलता रहता है, नृत्यांगना के पैर थिरकते रहते हैं।
1: ठुमके दे देकर, दोनों हाथों के अंगूठे दिखा दिखा कर,
0: घूंघट से झांकती कनखियों से नृत्यांगना गीत के बोलों को साकार करती रहती है।
1: गोकुल से सिर पर गागर और हाथ में गढ़ुए लेकर यमुना तट जा रही ब्रिजवाला नृत्य करते करते कभी चलते हुए कभी झुककर इस गीत को मूर्तिमान करती है।

0: ब्रज लोकगीतों में नारी के विविध रूपों का चित्रण हुआ है।
1: संतान न होने की वेदना, सास जिठानी द्योरानी और ननद से विवाद, और पति द्वारा सौत लाने की व्यथा,

0: इस सौत व्यथा के विपरीत एक लोकगीत में नारी की उदात्त भावना के दर्शन होते हैं।
1: इस लोकगीत में मरणासन्न पत्नी स्वयं अपने पति को दूसरा विवाह करने को कहती है और यह कहकर प्रलोभित भी करती है कि वो पीहर जाकर अपनी छोटी बहन से सगाई करा देगी और छोटी बहन उससे भी अधिक सुंदर है।

0: नारी की स्वार्थ परिता भी लोकगीतों में मुखरित हुई है। पति की नौकरी लगने पर और बाद में छूट जाने पर उसके मनोभावों में परिवर्तन हो उठता है।
1: एक लोकगीत में वो कहती है कि पति की नौकरी लगने पर माँ को घर से अलग कर देगी और ननद को उसकी ससुराल भेज दिया जाएगा।
0: किंतु जब नौकरी छूट जाएगी तो माँ और ननद को बुला लिया जाएगा और तीनों मिलकर सूत काट कर गुजारा कर लेंगे।

0: कन्या जीवन की करुणा के स्वर भी लोक गीतों में प्रस्फुटित हुए हैं।
1: विदा के समय वो अपनी उपमा आंगन की उस चिड़िया से करती है जो रुक चुक के उड़ जाती है।
0: आंगन के उस कूड़े से करती है जिसे झाड़ पहुंचकर फेंक दिया जाता है।
1: खूंटे से बंधी उस गाय से करती है जिसे जिधर चाहो हाँक दिया जाता है।
0: विदा के समय गाई जाने वाली इस गीत को सुनकर कठोर से कठोर व्यक्तियों के अश्रु रुक नहीं पाते हैं।

0: आज तो परिवार से मट कर रह गए हैं, पिता पुत्र से दूर, भाई भाई से दूर, किंतु 5 दशक पूर्व तक
1: हंसता बिहंसता संयुक्त परिवार होता था। अथाई पर बैठे ससुर, मुड़े पर बैठी सास, गुड़ियों से खेलती ननद, गेंद खेलते देवर, पुत्री दामाद पति और पुत्रवधू के अतिरिक्त वो स्वयं
0: केवड़े के पौधे की महक से महकते उद्यान की तरह।

0: कोटि कोटि कंठों की दीर्घकालीन यात्रा और जीवंतता के कारण लोकगीतों की रसधारा ना तो सूखी है और ना सूख सकेगी।
1: किंतु पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव के कारण लोकगीतों की धारा प्रवाहिता में अवरोध अवश्य उत्पन्न हो रहे हैं।
0: आकाशवाणी, दूरदर्शन और साहित्य संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं के प्रोत्साहन से लोकगीतों को संरक्षण तो मिला है,
1: किंतु इस पुरातन संपदा को ग्रहण अवश्य लग रहा है। अपनी बोली

0: अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति मोह कुछ कम हो रहा है।
1: ग्रामीण अंचल में भी कोट पैंट और टाई बेल्ट की संस्कृति में लोकगीतों को, उन लोकगीतों को जिनमें शाश्वत रस है, माधुर्य है, हे मानने की भूल हो रही है।
0: विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में प्रत्येक संस्कार, पारंपरिक पर्व और ऋतु पर्वों पर इतने अधिक गीत गाए जाते हैं कि
1: घर की बड़ी बूढ़ी कहती थी, अरे छई छाप रही हो, आप चुप भी आ जाओ।
0: घर में और घर से बाहर चलते चलते कभी मन बहलाव के लिए तो कहीं अपनी पीड़ा को गीत के माध्यम से स्वर प्रदान कर दिया जाता था।

0: किंतु अब ऐसे गीतों का स्वर मध्यम पड़ता जा रहा है।
1: बड़े नगाड़े जैसा लोकवाद्य बम अब ओझल होता जा रहा है। यदि बम फट जाता है तो फिर उसे मढ़ाने में उत्सुकता नहीं रहती।
0: बम की बात तो छोड़िए, अब तो ढोलक भी हर घर में नहीं मिलती है। नगरों में तो आवश्यक होने पर ढोलक पास पड़ोस में भी न मिलने पर किराए से मंगाई जाती है।
1: जनजीवन में आए इस बदलाव के कारण ही अब कम गीत ही लोकप्रियता की यात्रा पूर्ण कर लोकगीत का रूप ले पा रहे हैं।
0: ब्रज के कुछ लोक कवियों द्वारा रचित गीत आज केवल ब्रज में ही नहीं देश के अन्य राज्यों तक पहुंचे हैं।
1: ब्रज की होली से जुड़ा गीत आज ब्रज में हो रही रे रसिया केवल ब्रज में ही नहीं सुदूर प्रदेशों तक गाया जाता है।
0: इसी प्रकार सुप्रसिद्ध लोक कवि स्वामी मेघश्याम द्वारा रचित एक रसिया है

0: ब्रज संस्कृति की बहुमूल्य थाती से आज की पीढ़ी दूर होती जा रही है।
1: ब्रज लोक गीतों में संरक्षित इतिहास के पृष्ठ धुंधले पड़ रहे हैं।
0: जन्म से लेकर जीवन की अंतिम देहरी तक साथ देने वाले लोकगीत लोकमानस से बिछुड़ रहे हैं।
1: इस स्थिति को अनदेखा अनसुना नहीं किया जा सकता है। लोकगीतों की गूंज यदि समाप्त हो गई तो ऐसे लगेगा जैसे
0: किसी उद्यान में वाटिका में कोयल की कूक और मोरों की कूक नहीं है।
1: लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि लोकगीतों का उपवन महकता रहे, विहसता रहे।

0: और सखियां सीमा मोरवाल और शालिनी शर्मा। वादक कलाकार थे विवेक प्रकाश सक्सेना और मदनलाल। संगीत संयोजन था सुरेश गुप्ता और हरिबाबू कौशिक का। ये रूपक आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपक FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

फूल रहे हो रस केवड़ा, ये रूपक आपने ब्रज कलश रूपक श्रृंखला के अंतर्गत सुना। इसे लिखा और प्रस्तुत किया मोहन स्वरूप भाटिया ने। निर्देशक थे डॉक्टर उपेंद्र रैना। प्रस्तुति सहयोग था मोहित कुमार का। वाचन स्वर थे गोपाल शर्मा और डॉली अरोरा के। गायक कलाकार थे मदन मोहन ब्रजवासी, वंदना सिंह, श्रीमती आशा नीलेश और

अभी आपने सुना उमराव जान से लिया ये गीत आशा भोसले की आवाज में। संगीत तैयार किया था खय्याम ने।

सावन कुमार की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था खय्याम ने। अभी आप सुन रहे थे सोतन फिल्म से लिया ये गीत, आवाज थी किशोर कुमार की।

आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म थी दोस्ताना, सुर दिए थे किशोर कुमार आशा भोसले ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। लावारिस फिल्म से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले किशोर कुमार के युगल सुरों में।

आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात

समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI

पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन, भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा।

और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक

आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सबका पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक में हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टीयर 2 और टीयर 3 शहर

शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्रशक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ है। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही है, सरकार का सामर्थ्य आप ही है। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको

0: अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देख तुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

साथियों, आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, आप हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजा पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। हकीकत पूरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकर, एम फारूक शेख, शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज शेख, कुल फराज शेख, बेबी मुस्कान, आप सभी गंज ढुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशप सिंह, राहुल, आप सभी अंबाला हरियाणा से हमसे जुड़ चुके हैं। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़,

तेलंगाना से हमसे जुड़ चुके हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा आजबीन गुड़िया। सभी श्रोताओं का बहुत शुक्रिया। आर्य नगर कोह का भिलाई के हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी इन्हीं के साथ जुड़ चुके हैं। शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल, अंजलि और अमित, आप सभी सुखरी कला से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू, आप सभी पटेल नगर मालोद से हमसे जुड़ चुके हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्बू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदिबा, सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवयम जैन, आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं सरदना मेरठ से। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी जी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष और शौर्य दिनेश,

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस सुन रहे सभी श्रोताओं को चंद्रा खत्री का नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में। संदेश हम तक पहुंच चुके हैं आपके, सुरेश जायसवाल, उर्मिला और दीपक स्वाति आप सभी गाजीपुर से जुड़ रहे हैं, विपिन स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार आप सभी जमशेदपुर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, राजेश, राजदीप, राशि, श्रीमती शीतल आप सभी छत्रपति संभाजी नगर से जुड़ चुके हैं, ब्रजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं, रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बहन, राजेंद्र जी आप सभी नेपा नगर मध्य प्रदेश से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, अनिल कुमार, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम आप सभी सदर बाजार कुरावली से जुड़ चुके हैं, गौरव शर्मा, गरिमा, मुकेश छत्तीसगढ़ के श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, दीपेश, पूनम, ज्योति, शिवांश फिर छत्तीसगढ़, अजीत, प्रमिला, भावने, भावेश, सनी एंड अजीत आप सभी गुजरात से कार्यक्रम सुन रहे हैं, आदर्श नगर मालोट के राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना, निवान, नागपुर के हैं विठल, अनुसुईया एंड पवन राजी, संजय, उषा, प्रथमेश, निवृत्ति, शीर सागर, संजय कुमार चौहान आप सभी नसवाला चौक मलकापुर से जुड़ चुके हैं। साथियों आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, संदेश पहुंचाने के लिए शुक्रिया, नाजा पैलेस अजमेर शरीफ से सैयदा आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। बर्फ गांव नादुरा से हैं शिवाजी उगले, राहुल उगले एंड दामण गांव महाराष्ट्र के हैं भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी समर्थ एंड कुमारी सानिका, छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार एंड डीकेश साहू। साथियों सबकी पसंद सुनवाना तो कार्यक्रम में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ नाम कई हद तक शामिल करना तो पॉसिबल है ना। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के सौरभ, प्रकाश एंड बल्लू, तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशोर रिधान और खुराना आप सभी का शाहदरा दिल्ली से शुक्रिया। नूतन, अमन, बीबी आराध्या और लल्लू पंडित, ललन मिश्रा फुटानी चौक नारायण स्टेट से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, श्री राम गोंदाली, वैष्णवी, उषा गोंदली, युवराज आप सभी महाराष्ट्र से हमसे जुड़ चुके हैं, गांव हांडी खेड़ा से हैं राधेश्याम एंड इंदिरा सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में, सतीश, अनेजा, विमला, अनेजा चंडीगढ़ से। अगला संदेश लिख भेजा है तारा सराय, दरभंगा, कुशेश्वर नाग, कृति नाग, भूलिया गुप्ता एंड रजनी, अनिल, उषा, टिल्लू आप सभी पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हैं, मधु नायक हरियाणा से, धनोरी तेलीवाला से निसार, सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। गांव बांडीवाला, फाजिल का पंजाब से ओम, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा। महाराष्ट्र से हैं नारायण, दयानंद, ओमकार और साई। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद, सबिया, मिखाइल एंड जैनव कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधुओं को बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कैफ अंसारी, आसना अंसारी, नौरीन, नसरीन, राशिद हुसैन आप सभी जैन मंदिर वाली

गली कुरावली से जुड़ चुके हैं। पंजाब से गुरदर्शन लाल, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनंत और गुरशबद। भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष, आप सभी बेंगलुरु से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जुड़ रहे हैं मास्टर रुद्र प्रताप गुप्ता, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रानी, मुकेश एंड रूपा इलाहाबादी, ऐशबाग लखनऊ से हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। समस्तीपुर बिहार से हैं कारी, रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री, आप सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं में से अगली जो फरमाइश हम आपको सुनवा रहे हैं फरमाइश लिख भेजी है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता भगत, किस्सुतासु, अर्णव आनंद एंड सत्यम आनंद ने, और इसी के साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ चुके हैं मुन्ना भगत एंड गुड्डी भगत। आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम गीत बात और SMS में। अगला संदेश लिख भेजा है बुलडाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या एंड जय ने। कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल।

आप सभी दादरी गेट भिवानी से हमसे जुड़ रहे हैं। शिवाजी नगर खंडवासी राजेश सेन, कल्याण मुंबई से किशोर सुजाता प्रतीक, आप सभी का धन्यवाद। मेहर अरोरा ममता कीर्ति भूमिका, आप सभी श्रीगंगानगर राजस्थान से जुड़ चुके हैं। बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र उमेश एंड प्रमिला, आप सभी छत्तीसगढ़।

बबीता मिगलानी, आप सभी कृष्णा कॉलोनी हांसी से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शाहूनगर यवतमाल से राहुल, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी, आपका संदेश हम तक पहुंच गया है, आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जुड़ रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष, कोयल एंड डुगू भाविका, मलकापुर से नारायण, सोपान, आशीष और महाराष्ट्र से हैं पीएस नहावाकर, निर्मला एंड विशाल, अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, आसमान, दीपक, अनुश्री, आप सभी छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ चुके हैं। अगेन छत्तीसगढ़, कीर्ति कुमार, श्रीमती संतोषी, दिल्ली पम्मी ग्रुप, पिया हर्षिता ध्रुव, निशांत ध्रुव, शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष, रायगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम है गीत बात और एसएमएस। अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, आप सभी श्रीरामपुर से हैं, पुनावले से हैं अजय, सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम, साबिर राही, मेहराज जहां, आप सभी आज़ाद नगर लग्जर हरिद्वार से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हैं खुश दिल परिवार, पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी, पूरा ही खुश दिल परिवार। श्रीगंगा नगर से हैं प्रेम, सहारना एंड मोनिका एंड मनीष, बिल्कुल आपको किसी भी गीत में हमने जोड़ लिया है, सुनिएगा, बहुत अच्छा गीत सुनवाने वाले हैं अभी हम आपको। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्नव, आनंद, सत्यमानंद, आप सभी झारखंड के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। बबलेश, डेनी, मनीष, आप सभी बाड़मेर राजस्थान से हैं, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, सभी का बहुत धन्यवाद। अहमदनगर से हैं मोहम्मद नाजिर हुसैन पटेल, अमिता पटेल, आपका भी धन्यवाद। दरियापुर के हैं सुनैना पावन एंड तनुज पावन, बुलडाणा से हैं दीपावली राम एंड स्वराज राम, इसी के साथ जुड़ चुके हैं राजेश, शिवसागर, इंद्रताई एंड छकुलताई, आप सभी शिवाजी नगर बडाली देशमुख से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। कमल सानी, मिस्टर पिंकी सानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कर एंड बेगम इफ्जाल, आप सभी महाराष्ट्र नागपुर से हैं। रामगढ़ से हैं निप्पी सहानी एंड मिसेज सुनीता सहानी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, शिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, प्रकाश जैन, लातूर से हैं संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं गजानन एंड मरुतराव, अजय, करिश्मा, अविका एंड साईशा, आप सभी पुनावले से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है साथियों आप हमसे जुड़ते हैं तो। राधे कुमार, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, प्रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा, सभी का शुक्रिया बिहार से हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। सहारनपुर से सैयद मजरूर, शाहन आजम, अगजाम, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम एंड अदीम हसन, बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका एंड बेबी अनिष्का और तन्मय, छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा, सबिया, अनास और रेहान, शत्रुघ्न धांडे एंड वकील वाल्मीकि, नीना जी एंड स्वप्निल, आप सभी मलकापुर महाराष्ट्र से हमसे जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत शुक्रिया। एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, आप सभी झारखंड से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। अगला संदेश गुजरात से लिख भेजा है रश्मि, झरना और भरत कुमार ने। कासगंज से जुड़ चुके हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्फा, इल्मा, एसएमएस, एसएम असलम, मास्टर जाहिद, मीरा सराय बुनायू से, आफरीन खान एंड जमीर खान।

गीत बाद और SMS में अगला संदेश लिख भेजा है हिसार से राजकुमार और प्रमोद कुमार ने। पांडु चंदन उषा चंदन रानी प्रतीक्षा अभिषेक सार्थक प्रथमेश संतोष और पांडु रंग आप सभी कोलगांव से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली सुरेश नारंग। कलानौर से है नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा एंड नितिन और मयंक। पाकिदा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से है मोहम्मद सादिक मुश्ताक मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमी गौड़ मोहम्मद शादाब। जामा मस्जिद रोड गोगावा से है हाजी इसहाक और मोहम्मद उमर कासमी हाजी अयूब शेरी शुक्रिया आप सभी का। लक्ष्मी नारायण विजया अभिनय साईं किरण आप सभी करीमनगर से जुड़ रहे हैं। हरजिंदर जसवीर जस्सी सीता और गीता आप सभी पंजाब से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया। आकोर से विनायक बेंडे श्रीमती मंगला विजय शुभम आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यवतमाल से जुड़ रहे हैं जयराम दिशांत और अर्पिता। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया और दिशानी आओ निमिता हुजा आप सभी का धन्यवाद। पानीपत से भावना नरेश लक्ष्य मल्होत्रा आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं आपका धन्यवाद। निकट परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अमान पूरा आबासी परिवार बुलंदशहर से हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। साथियों हमारी पहले भी रिक्वेस्ट थी और अभी भी है कि आप लोग दो दो SMS ना भेजें क्योंकि वो श्रोता जिनका SMS शामिल नहीं हो पाता तो नाराज़ हो जाते हैं और आपका नाम दो दो बार शामिल हो जाता है। छन्नूलाल अनीता अंजू रजन साहू हेमंत और धर्मदास आप सभी का शुक्रिया बिलासपुर से जुड़ने के लिए। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा उमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी बेबी बॉय हिमांश जोधपुर राजस्थान से चंदौली से सुंदर सुमन जमशेदपुर से मुराहू देवंती चंदौली से विजय और सरोज जमशेदपुर से रोहन और आर्य बड़ा ही सजाकर मैसेज आपने भेजा है। संदीप ज्योति मन्नत भरत कमल आप सभी पिंगलावाला चौक से हमसे जुड़ रहे हैं आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रदीप कुमार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया। बस इसी के साथ गीत बाद और SMS कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीतों का। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे रेखा माहौर के गाए लोकगीत।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम का। आज की कलाकार

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं रेखा माहौर के गए ब्रज लोकगीतों का।

ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेखा माहौर के गाए लोकगीत। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है।

0: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका का कार्यक्रम विज्ञान भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। किसान भाई और बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे किसान वाणी संध्या 6:15 से। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा एक भेंट वार्ता। विषय लेकर आएंगे धान की नर्सरी तैयार करने में सावधानियां एवं सुझाव। वार्ताकार होंगे सुधीर अग्रवाल। आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह।

ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे श्रीमद् भागवत कथा। शीर्षक रहेगा देवकी वासुदेव विवाह। कथाकार होंगे गोस्वामी राम गोपाल।

बहनों के लिए कार्यक्रम होगा घर अंगना दोपहर 1:15 पर। दोपहर 1:45 पर आप सुन सकेंगे गुजराती भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। गीतकार होंगे जगत चंद्र मेघानी।

अपने सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय लेकर आएंगे, स्टार्टअप को अपनाएं सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन। इसी के साथ युवा साथी फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे।

संध्या वंदन। इस कार्यक्रम का समय संध्या 6:45 रहेगा। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय संध्या 7:31 रहेगा। रात्रि 8 बजे से आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 से आप सुनेंगे। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर।

अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

संवेद सुरों में अभी आपने सुना देशगान एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम घर अंगना। कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही है विजय लक्ष्मी। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं ओपी सिंह।

मांगना कार्यक्रम को सुनवे बारी हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनाओं कैसी हो? बढ़िया। अरे बहनाओं गर्मी तो पड़ी रही है, खूब पानी पीती रहो, नींबू की शिकंजी पीती रहो, और देखो मूड को ढक कर तो डोल नहीं है, नहीं तो धूप मूड चाट जावे और फिर होवे हमारे सिर में दर्द और फिर हम कहें कि काम कैसे करें और काम हमें करना ही करना है और जे ही ना है अपने स्वास्थ्य को ध्यान रख के काम करना है क्योंकि हमसे पूरे परिवार को स्वास्थ्य जुड़ो होवे। एक बहन पूरे परिवार को लेकर चले है सवेरे से लेके रात तक के जो बाकी काम है ना, अगर बिना लिखना शुरू कर दिया जाए तो पन्ना कम पड़ जाएगा और काम पता ही ना कहाँ जाएंगे। और अगर बात करी जाए पुरुषन की सभा में तो जो लगे कि दो रोटी बनाए के जे महिला करें कहाँ है। पर बहनाओं महिलाओं को काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अपने सब परिवार के सदस्यन को ध्यान रखें, जब ही तो वो सदस्य प्रसन्नतापूर्वक सबरे कामन को करें। और देखो बहनाओं आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टूला दिवस है, जाकू समाप्त करवे की पूरी कोशिश

करी जा रही है। अब हमारी बहन सोच रही होंगी कि जे का परेशानी है, जे का बात है। तो बहनों, जो हमारी बहन लंबे समय तक प्रसव पीड़ा को झेले है ना, बिन कुछ समस्या है जावे। जे महिलान के गुप्त अंगन में समस्या जब ही होवे, जब उन्हें अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर, अच्छी सर्जरी ना मिले, क्योंकि प्रसव पीड़ा बहुत लंबे समय तक ना चले बहनों।

0: बहुत लंबे समय तक ना चले बहनों, पर हमारी जो पुराने जमाने के लोग हैं ना, वो आ जाओ यूं कह दे मैं कि ना ऑपरेशन थोड़ा ना करांगे, घर में ही प्रसव है जाएगा, का करेंगे ले जाए के, थोड़ा बहुत तो दर्द झेलना ही पड़ेगा, पर जे दर्द बाद में जाए के बड़ो मूड़ दर्द बन जावे तो ऐसा ना करें, क्योंकि एक बहन जान पे खेल के दूसरे नव जीवन को धरती पे लावे है। तो ऐसे में हम सबन को कर्तव्य बने हैं कि वह बहन की मदद करना, वह बेटी की रक्षा करना, बहू है तो वह बहू की रक्षा करना, क्योंकि वह की जान की रक्षा करवो वह समय हमारो फर्ज है और हमारो नैतिक कर्तव्य। तो ऐसे में प्रसव सुरक्षित अस्पताल में कराया जाए, अच्छी दवाइयों को प्रयोग और संग में बाल विवाह की रोकथाम बहुत जरूरी है बहनों। जे एक गंभीर समस्या है ना, तो जाए हमें रोकनो है, क्योंकि जे रोकनो बड़ो आसान है, क्योंकि जे हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हम बहन है के एक नारी की पीड़ा को अगर ना समझे तो कहाँ समझेंगे। जे तो वो पीड़ा है जो एक नव जीवन को सामने लाए बीमारी है और सृष्टि को सृजनु जय माध्यम से है। तो जब नारी की बात आवे है ना, तो हाथ जोड़े जामे कि मैं कि जहाँ नारी की पूजा होवे वहाँ देवता निवास करे हैं। जे बात ऐसे ही नहीं कही गई है, जा बात को कहवे को यही आशय है कि नारी के रहवे से घर घर लगे है, अंगना नाच है झूम है, वहाँ में गीत तराने गूंजे हैं। तो बहनों जब बहन प्रसन्न होंगी तभी तो पूरे परिवार को सुखी रखेंगी, और देखो परेशानी चाहे कोई सी हो क्यों ना हो, तो हमारे शरीर को भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है कि एक कन्नी उंगरिया में परेशानी है जावे ना तो बहु लगे, एक चुन्नी सी फांस मनुष्य को कितना तो हट्टो कट्टो शरीर होवे, वहां में एक छोटी सी फांस लग जाएगी ना तो पूरा ध्यान वो फांस पे लगेगा, लगे कैसे वो पहले जी निकल जाए, जी सबसे बड़ी तकलीफ है। तो बहनों जहाँ मैं तो जी सभी समस्या, अभी हम मायोपिया की बात करें, आंखन की समस्या की बात करें, तो बहनों बिना आंखन के कछु ना है भैया, आंखन के बिना कहाँ है, नेक आंख बंद करके कमरा में खड़ो कर दियो जाए ना तो आदमी को जी घुट जावे, लगे कहाँ आए गए, दरवाजो कितकू है, अगर इतकू दरवाजो है तो उतकू पहुंच जावे और दीवारन पे हाथ टटोर के देखें कि कितकू आए गए और कितनी घुटन होवे। तो वाह व्यक्ति से पूछो जाए नेत्रन में दोष है, जाए ना दिखाई दे रो, अगर वह पहले समय रहते छोटी मोटी परेशानी इनको इलाज कर लियो जाए तो आधी समस्या तो हल है ही जाएंगी। तो बहनों कैसे हल होंगी जो समस्या, जो समस्या हमारे कर्वे से हल होंगी, जानकारी लेवे से हल होंगी। जानकारी कैसे लेंगे, अरे जानकारी हम दिखा रहे हैं हमारी सबरी बहनान को, जानकारी हमें दे रही हैं डॉक्टर शोभिता रथ, और जो जानकारी को दिखा रहे हैं ओपी सिंह, कहा विषय मायोपिया कारण और निदान। तो बहनाओ आओ सुनो।
1: बताओ, आंखें वो अंग हैं जो दुनिया को देखती हैं। दुनिया को देखने के बाद हम समझते हैं, जानते हैं, यानी दुनिया की रंगीनियों को देखने के लिए आंखों का बहुत महत्व है। ये आंखें ठीक हों, स्वस्थ हों, सही से काम कर पाएं, तो दुनिया के मायने हमारे लिए अलग हो जाते हैं। बच्चों में मायोपिया एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये मायोपिया क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर हो जाता है तो उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभिता रथ जी। आप वरिष्ठ आई सर्जन हैं डॉक्टर श्राफ आई केयर इंस्टीट्यूट दिल्ली में। मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी, तो जो मायोपिया जैसी समस्या है, थोड़ा सा बताएं सबसे पहले तो ये मायोपिया होता क्या है और बच्चों के लिए इसके क्या मायने हैं।
2: तो मायोपिया का मतलब ये है आपको पास की चीजें साफ दिखती हैं लेकिन दूर की जो चीजें हैं वो आपको कम दिखता है, धुंधला दिखता है, यानी बच्चा जैसे ब्लैक बोर्ड देखने में दिक्कत होगा, आप ड्राइविंग कर रहे हैं सड़क पे कोई बोर्ड है उसमें दिखने में दिक्कत हो सकता है, तो नजदीक का क्लियर है पर दूर का आपको धुंधला दिखता है,
1: जी
2: शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें माइनस का नंबर आता है और हम लोग माइनस नंबर चश्मा जो जनरली हम बोलते हैं चश्मा आ गया स्कूल के बच्चों में या किसी को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये माइनस नंबर का चश्मा को कॉमन लैंग्वेज में मीन करता है कि मायोपिया।
1: जी, तो मतलब यह है कि जब बच्चा घर में रहता है, छोटा होता है, तब तक ये चीज उतनी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, लेकिन जब बच्चा ऑब्जर्व करता है, देखता है, दूर की चीज को समझ में नहीं आती है, तब वो कहीं

0: जाके बताता है, तो पता लगता है कि ये बायोपिया हो सकता है, यानी दूर की चीज उसको दिखाई नहीं दे रही।
1: जनरली आप जो बोल रहे हो वो सही है, पर इवन छोटे बच्चों में भी अगर बहुत पास लेके जा रहा है और उस पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वो उसको दिक्कत होती है देखने में, तो भी माइनस नंबर तभी आ जाता है। और तभी एक स्क्रीनिंग या पीडियाट्रिक ऑप्टोमोलॉजिस्ट जैसे बच्चों के आंखों के स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए।
0: जी जी
1: थोड़ा
0: जी।
1: सा बड़े होने से क्या होता है, हमारा विजुअल फील्ड यानी जो हमारा काम करने का स्पेयर है वो बढ़ जाता है। बच्चा स्कूल जाने लगता है, बुक पढ़ाई करता है, ब्लैक बोर्ड में होता है, तो बहुत बार ये स्कूल में टीचर्स पकड़ने के बाद फिर बच्चे आते हैं या पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए, चेकअप के लिए।
0: जी जी इसीलिए शायद स्कूलों में एक ड्राइव चलाया जाता है कि बच्चों की आंखों की जांच होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या उनके घर में उतने पेरेंट्स सजग नहीं है कि उनकी बात को समझ पाए, तो ये ड्राइव चलता रहता है। अब इसके पीछे के अगर कारण में जानना चाहूँ कि मायोपिया होता क्यों है, तो थोड़ा सा बताइए कि इसके कारण क्या है मायोपिया होने के।
1: तो बेसिकली मायोपिया एक बनावटी डिफेक्ट है, जैसे आंख का साइज बड़ा होता है इन बच्चों में, जो इनका आंख का करेक्ट साइज होना चाहिए, उम्र के बराबर साइज होना चाहिए, उसके हिसाब से आंख का साइज बड़ा होता है। और क्योंकि ये साइज बड़ा होता है, जो परछाई बनना चाहिए और रेटिना में पड़ना चाहिए वो नहीं होता है, तो इसमें इमेज बनने में दिक्कत होती है, इसलिए बच्चे को क्लियर नहीं दिखता है। अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम माइनस चश्मा से दिया जाता है, एनाटॉमिकल कॉज है
0: जी
1: जनरली।
0: जी मतलब एक तरह से कहें तो ये जन्मजात है, बच्चे की आंख की बनावट ही इस तरह की, इसलिए ये दोष हो रहा है।
1: ये हम डायरेक्टली तो जन्मजात नहीं बोलेंगे,
0: जी
1: पर जैसे ही बच्चा ग्रो कर रहा है, मान लीजिए हमारा हाइट बढ़ रहा है और बच्चा ग्रो कर रहा है, वैसे उस हिसाब से एज अप्रोप्रिएट अगर साइज नहीं होता है, तब साइज बड़ा हो जाता है आंख का साइज, तब ये हो जाता है, तभी ठीक इमेज नहीं बनता है, तो उसके वजह से
0: जी
1: हम लेते हैं और बिकॉज उसे धुंधला दिखता है।
0: जी जी तो अब जैसे आइडेंटिफाई हो गया कि बच्चे के मायोपिया है, इस तरह की समस्या है कि उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, पास की तो सब कुछ ठीक है उसकी नज़र, तो फिर एक सलाह और डॉक्टर की वो बनती है ओपिनियन कि भाई अब इसको सही कराया जाए, उसके चश्मा लगाया जाए, यही इसका इलाज है।
1: हाँ, चश्मा ही इसका इलाज है, कॉन्स्टेंटली चश्मा लगाएगा यानी हमेशा चश्मा लगाएगा, ये नहीं कि स्कूल गए तब हम चश्मा लगाए। एक बार नंबर आ गया है मायोपिया माइनस हो, या उसके साथ कभी सिलेंडर नंबर आता है, इसको मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, जब भी हम स्कूल गोइंग बच्चे या बच्चे को चश्मे का नंबर आ जाता है, उनको कंटिन्यूअसली चश्मा लगाना है, चश्मा ही इसका मेन इलाज है।
0: जी
1: बाकी आगे मायोपिया ना बढ़ने के लिए उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लिया जा सकता है।
0: जी जैसे क्या हो सकती है उसमें, चलो चश्मा हमने लगा दिया, लेकिन अब जो
1: हाँ,
0: आगे की और जो देखभाल है, जो खान पान की है, रहन सहन की है या उसकी है, वो क्या हो सकती है।
1: तो ये जो खान पान रहन सहन बेसिकली हमारे लाइफ स्टाइल, कुछ हमारे जो हैबिट है उनको हमें बदलने पड़ेंगे। जैसे आजकल हमारा सारा चीज मोबाइल पे होता है, तो बच्चे पूरा मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं, होमवर्क मोबाइल में आता है, एंटरटेनमेंट मोबाइल से होता है, तो द फर्स्ट थिंग या जो मेन चीज हमें करना है कि मोबाइल से दूर रखना है, मोबाइल टोटल नो हो जाना चाहिए स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। इन केस जो कंप्यूटर का काम है या स्क्रीन का काम है वो हम जितना जरूरी उतना ही करें, बाकी होमवर्क हम नोटबुक में कर सकते हैं, प्रिंटआउट लेके कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि डिजिटल टाइम को हम टोटली अवॉइड कर ले, स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज कर दे, जितना कम से कम हम मोबाइल यूज करें उतना ही बेहतर है।
0: जी इसमें कुछ जैसे आउटसाइड एक्टिविटी घर से बाहर होती है, पहले बच्चे एक खेलने के लिए बड़े आतुर रहते थे
1: हाँ
0: कि कब होमवर्क खत्म हो, कब स्कूल खत्म हो, माता पिता की बंद से थोड़ी खत्म हो, तो हम सुबह शाम जाके घर से बाहर खेल आए, लेकिन वो
1: करेक्ट,
0: आउटडोर एक्टिविटी आजकल नई बच्चों में देख रही है, बड़ा
1: हाँ बिकॉज
0: लेथार्जिक।
1: बच्चे मोबाइल को ही एंटरटेनमेंट डिवाइस जैसे यूज कर लेते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: आउटडोर जो खेलने के लिए उनका टाइम है वो बहुत कम हो गया है, तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है या बहुत मुख्य कारण है जिसको अगर हम चेंज करें अपने लाइफस्टाइल में, प्रतिदिन 1 घंटा एटलीस्ट आउटडोर करें, थोड़ा बाहर खेलने के लिए जाए, भले ही वो वॉक हो जाए, वो साइकिलिंग हो जाए, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, पर आउटडोर एक्टिविटी को ध्यान
0: जी
1: देके, या स्कूल में जैसे पीई पीरियड्स होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस होते हैं, उसमें उसको भी टीचर्स को इम्पोर्टेंस देना है कि यही आउटडोर एक्टिविटी स्पोर्ट्स को हर बच्चे को कंपलसरी करवाना है।
0: जी, मतलब अब उनको

0: जो पहले अंदर रोकने के लिए सजेशन देते थे, अब वो चीजें बाहर बच्चे को भेजने के लिए हमें फोर्सफुली ही करनी पड़ेंगी, भले ही कितना ही वो करना पड़े, लेकिन वो हेल्थ के लिए आवश्यक है।
1: हाँ,
0: जी,
1: आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाना है, इंडोर नहीं रहना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है, अंधेरे में नहीं पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना है, जब हम पढ़ रहे हैं तो सही से बैठ के करेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़ाई करनी है,
0: लाइट ठीक रखनी है।
1: लाइट ठीक रखनी है।
0: जी, कुछ आई एक्सरसाइज आप बताना चाहें, जैसे आजकल हम कई बार देखते हैं, पहले जब हमारा समय था तो खुले आसमान को देखने की बहुत आदत होती थी, बाहर बहुत देखते थे, लेकिन आजकल ये दूर देखने की एक्टिविटी तो हो ही नहीं पाती है, तो ये कुछ आँखों की एक्सरसाइज आप बताना चाहें।
1: जब हम कंटिन्यूअसली नजदीक का काम करते हैं, जैसे बड़े बच्चे हैं, 7th से 10th तक बच्चे, उन लोगों को पढ़ाई करनी है रेगुलरली, कांस्टेंट पढ़ाई के बीच बीच बीच में उनको एवरी 1 आवर में सम 15 to 20 मिनट्स के लिए वो रेस्ट ले सकते हैं, यानी दूर देख सकते हैं, ताकि आंख के मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हम छोड़ें। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज वैसे हम रेकमेंड नहीं करते, बट चश्मा हमेशा लगाना है और बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ाई कर सकते हैं।
0: जी, आजकल जिस तरह का प्रोग्रेसिव चश्मे की वो एक फैसिलिटी आ गई है, क्या इसमें वो ठीक रहेगा कि ऐसा चश्मा बनवा लिया जाए जो दूर का पास का एक ही हो, अगर हमें 24 घंटे लगाना है तो।
1: मायोपिया में हमें प्रोग्रेसिव की वैसे जरूरत नहीं है,
0: जी,
1: मायोपिया उनके माइनस नंबर है, बट मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस में कुछ चश्मा स्पेसिफिक आते हैं। मायोपिया के अलावा जो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है कि आजकल के बच्चों में मायोपिया जल्दी बढ़ भी जाता है, बहुत फास्ट बढ़ता है ये मायोपिया के नंबर, आज -2 है, 6 महीने से पहले ही ये नंबर -3 -4 तक चला जाता है।
0: जी, इसका मतलब जैसे ही पता लगे तो तुरंत ही, कम से कम चश्मा तो तुरंत ही लगवाना है मैंने।
1: चश्मा तो तुरंत ही लगवाना है, बाकी ये सारे जो प्रिकॉशंस या जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम लोग बदल करके उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और मायोपिया को ना बढ़ने के लिए ड्रॉप्स आते हैं तो रेगुलर चेकअप में अगर हमारा आंख का साइज बढ़ता है, चश्मा नंबर बढ़ जाता है जल्दी, तो ड्रॉप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, स्पेशल एंटी मायोपिया ग्लासेस आते हैं वो भी हम रेकमेंड करते हैं पहनने के लिए।
0: जी, चलिए, आपने काफी कुछ चीजें बताई, कुछ और जिन चीजों को आप एक बार रिपीट करना चाहें दोबारा से हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताना चाहें कुछ चीजें।
1: एक्चुअली हम ये सब आज क्यों डिस्कस करना चाहते हैं ज्यादा, बिकॉज ये जो हफ्ता है हमारा, ये मायोपिया अवेयरनेस वीक जैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, कि हम एटलीस्ट सबको ये बताएं कि मायोपिया एक जस्ट चश्मा नंबर नहीं है, मायोपिया एक बीमारी है या एक प्रॉब्लम है जो बच्चों में शुरुआत होके बड़ों में भी कभी कभी नंबर आ सकता है, पर इसको बहुत ध्यान दे के हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि जिन पेरेंट्स को भी माइनस नंबर है उन बच्चों को जल्दी आ सकता है नंबर, उन बच्चों में ज्यादा चांसेस है आने में, उन बच्चों में मायोपिया नंबर बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार नंबर आ गया नंबर कम नहीं होता है,
0: जी,
1: नंबर
0: तो
1: बढ़ने के चांसेस हैं,
0: हाँ,
1: तो
0: तो
1: हमें वैसे प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए।
0: जी, चलिए, आपने एक अच्छी जानकारी, कम से कम एक श्रोताओं को ऐसी जानकारी जो हम ये मान लें कि अगर आंखों में मायोपिया है तो चश्मा हमें लगाना ही है, और साथ ही साथ जो चीज़ें हमें और ऑब्जर्व करनी है कि उसकी देखभाल करनी है, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, तो ये भी आवश्यक है। श्रोता बंधुओं, आप थी डॉक्टर शोभिता रथ जी, आप वरिष्ठ सर्जन हैं आँखों की, जो बच्चों की समस्या होती है ऑप्थोलमेजी की। डॉक्टर रथ, आप हमारे साथ जुड़ी मथुरा आकाशवाणी के साथ, आपने मायोपिया पर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: बहना ने अभी इतनी बढ़िया जानकारी लाई मायोपिया कारण और निदान विषय पे, और कितनी बढ़िया जानकारी दी भाई ओपी सिंह जी ने, और हमारी जो जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शोभिता रथ जी, कितनी बढ़िया बतायो कि अगर कोई समस्या है तो समाधान हुए, अगर आंकन की समस्या है तो हमें बाहर के खेल खेलने हैं, अगर बालकन में है तो, और आंखन को काम अपने हिसाब से करना है, नेक रोशनी बढ़ा के करना है, नहीं तो परेशानी है जाएगी, और परेशानी भी है तो डॉक्टर से संपर्क करें, अच्छी दवाई अच्छा चश्मा हमेशा लगाएं, जब तक डॉक्टर की है तब तक, जैसे डॉक्टर के व्यक्ति बात मान के काम करें भाई, डॉक्टर को भगवान जय मारे कहो गयो है, क्योंकि हमारे संग हर समय ईश्वर काऊ न काऊ रूप में रहवे।

हम पे समस्या है, तो डॉक्टर के रूप में हमारे संग भगवान है। तो देखो, जा समय मायोपिया देख रेख सप्ताह मनाया जा रहे हो, और आँख कितनी कीमती है जाकू तो हम सबई जाने। आँखन की जो महत्व है बाकू तो ना एक शब्द में कहे जा सके और ना एक किताब भर के कहे जा सके, क्योंकि जी तो वो अनुभव है जय हम भीतर से सबई महसूस करें। तो अपनी आँखन को सबई जने सुरक्षित रखें, ठंडे पानी से साफ पानी से आँखन को समय समय पे धोएं। जा समय गर्मी पड़ रही है तो डायरेक्ट धूप में ना जाएं, आंख लाल है जाएंगी, मुंह को कपड़ा से ढक कर निकलें। अधूरे कपड़ा तो बिल्कुल ना पहने क्योंकि धूप लग जाएगी, जब उसे हमें फर्क पड़े। और बहनाओं, ब्रज में आई और ब्रज के उस सवन को आनंद ना ले ऐसा ना है सके। तो जहाँ समय चाहे गर्मी पड़ रही है पर फिर लौंद को महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहे हो, तो जहाँ समय भक्त अपने घर से ठाकुर जी की जगह जगह मंगला झांकी दर्शन कर भी निकल रहे हैं, और ब्रज के आनंद को तो कहाँ कहे, वो जास में गिरिराज जी की परिक्रमा में जो आनंद बरस रहे हो वाको कहाँ कहें। तुम सबन को सुनना है तो आओ सुने, जब प्यारे से लोकगीत को जैसे आनंद आ जाएगा, बहनों सुनो।

0: चलो री चलो परिकम्मा, पन्ना लाल और साथिन के स्वर में। अबई भेना सुन रही हती जा बहुत सुंदर से लोकगीत को। तो देखो भेना, मानसिक परिक्रमा हम सबन की बैठे बैठे ही लग गई, क्योंकि भगवान के है कि केवल हमें मन से याद कर लो तब भी मैं तुम्हारे संग हूँ, क्योंकि ईश्वर तो हमारा ईश्वर है। और ब्रज में आए के माने हमारे सर पे जब अपना हाथ रख दियो तो हम गदगद है गए, और हम इतने मन में भावुक है गए कि कन्हैया हमारो है। और भेनाओ चाहे कितनी गर्मी पड़ रही है, जे ही भाव दर्शावे कि ब्रजवासी पर कम्बल लगाते भाई दिखे। लेकिन अभी हमें अपने ब्रजवासी और समस्त भैया बहनन को जे ही बतानो है कि जा समय गर्मी जोर पे है, चरम पे है, लू चल रही है, और वासे बचाव करके रखनो है, नहीं तो परेशानी है जाएगी। तो कैसे बचाव करना है आओ हम जाने डॉक्टर भारती गर्ग से, और जा जानकारी को दिखाए रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, गर्मी के मौसम में सामान्यतः लू चलना, तापमान बढ़ना एक एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस समय जब बातचीत चल रही है चारों तरफ हम सुन रहे हैं कि हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां बन रही है, तो ये लू या हीट स्ट्रोक क्या होता है, इससे कितना घातक हो सकता है, किस तापमान के बाद ये परिस्थितियां पैदा होती हैं, और इन परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए, अपने कामों में क्या सावधानी रखनी चाहिए, चाहे जीवन शैली की बात हो, चाहे खान पान की बात हो या व्यवहारगत हो, तो इन सब जानकारी के लिए आज हैं डॉक्टर भारती गर्ग साहब, जो वरिष्ठ फिजिशियन है, कार्डियक स्पेशलिस्ट है मथुरा शहर की। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। तो अब ये जो हीट स्ट्रोक जिसको आजकल हम चलन में कह रहे हैं,
2: हीट वेव जिसको बोलते हैं,
1: तो ये क्या मतलब, किस तापमान के बाद हम इस तरह के टर्म्स का यूज कर सकते हैं?
2: जी, जैसा कि प्रचलन में है कि ज्यादातर जो मैदानी इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो है हीट वेव रहती है, तो अगर ये तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर मैदानों में और 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर पहाड़ों पर होने लग जाए, तो इस परिस्थिति को हम लोग हीट वेव का नाम देते हैं। और हीट वेव की वजह क्या होती है कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितना जलवायु परिवर्तन इस समय हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग जो सारे विश्व को जिसने परेशान करके रखा हुआ है, जो ठंडे देश रहते थे वहां भी आजकल जो है तापमान जो है 40 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंचने लग गया है, तो हमारा भारत हमेशा से यहां पर जो है गर्मी की अधिकता रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज है कि जिस तरीके से कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रही हैं, जंगल हमारे समाप्त होते जा रहे हैं, हरियाली कम होती जा रही है, तो सूरज के किरणें जब गर्मी का मौसम आता है तो जमीन की सतह से जब वो टकराती हैं तो वापस आने के लिए उनके पास में कोई खुला हुआ स्पेस नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ जो है बिल्डिंग्स वगैरह होने से तो जो हीट जो जनरेट होती है वो ट्रैप हो जाती है,
1: मतलब उसको धरती एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है, पकड़ लेती है,
2: उसको आसमान में जाने का उतना मौका नहीं लग पाता है, तो वो कंडीशन जो है हीट वेव का रूप बन जाती है। अगर तापमान 40 डिग्री से ऊपर है तो हीट वेव है, और इसमें क्या होता है शरीर का तापमान जो है एकदम से बढ़ जाता है, और अगर ये 102 डिग्री तक हो जाता है तो इस हीट क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। हीट क्रैम्प्स का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से तापमान की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन बन जाता है, और उस डिहाइड्रेशन की वजह से चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, अगर वो बाहर धूप में रहते हैं या वो अधिक मेहनत कर रहे हैं या खेल कूद रहे हैं या मजदूर है जो अपने काम पर गया हुआ है, तो अचानक से उसको फेंट हो जाना, चक्कर आके गिर जाना, या फिर उसको शरीर में स्वेलिंग आ जाना।

0: तरह के लक्षण उसको आ जाते हैं। इससे भी अधिक खतरनाक स्थिति जब बनती है जब तापमान जो है एकदम तेजी से बढ़ जाता है, तो अगर ये तापमान 45 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है और सारा उसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उस पसीने में बाहर निकल जाते हैं, और अगर ये पानी इतना फ्रिक्वेंटली या इलेक्ट्रोलाइट्स वापस नहीं पिए जाए तो वो तेजी से उसको हीट एग्जॉशन हो जाता है, और उस हीट एग्जॉशन की स्थिति में क्या होता है कि उसको जो है चक्कर आने लग जाते हैं, सर में दर्द होने लग जाता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है और उल्टियां वगैरह आने लग जाती हैं, और कई बार वो बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसको हीट स्ट्रोक हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, जिसमें अगर शरीर का तापमान अगर तेजी से 104 से 106 डिग्री तक बहुत कम टाइम में बढ़ जाएगा, 10-15 मिनट में ही बढ़ जाता है, तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है और उसमें वो कोमा में जा सकता है वो मनुष्य, और उसको कंफ्यूजन हो सकता है या फिर उसको दौड़े आने लग जाते हैं, तो इस स्थिति को हीट स्ट्रोक कहा जाता है और ये जो है जानलेवा भी साबित हो जाती
1: है। सकता है। अब
2: तो देखो बहनों, अभी कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं डॉक्टर भारती गर्ग, और जो जानकारी को दे रहे हैं ओपी सिंह जी। तो हमें गर्मी से बच के रहना है, क्योंकि जो गर्मी साधारण ना है, अपने पे आई गई है जा समय जा को चरम है जा कोई ओवन है, तो हमें थोड़ा अपने आप को ढक के ठंडा पानी पी के, नींबू की शिकंजी पी के और सिदौसी काम करके, है ना, अपने आप को बचाना है। धूप ते पहले काम कर आओ, और धूप ते कह तो देखो हमने तो तुम ते पहले काम कर लायो, और अब हमें आज्ञा दो हमारे जो कार्यक्रम को यहीं विराम देवे की। हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना। कार्यक्रम की प्रस्तुति विजय लक्ष्मी की थी। इस कार्यक्रम के संयोजक थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए गुजराती भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। गीतकार हैं जगत चंद्र मेघानी।
1: नमस्ते चंदू भाई।
2: नमस्ते हिरलबेन। नमस्ते शिवानी बेन। मैं आपको संघ गान के रूप में आज एक काव्य सिखा रहा हूँ। काव्य की रचना झवरचंद मेघाणी ने की है। झवरचंद मेघाणी राष्ट्रीय शायर थे। सौराष्ट्र का लोक संगीत उसने अच्छी तरह से समृद्ध बनाया है। ये वही रचना है जो लोक संगीत में बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं पहले आपको ये रचना लिखवा दूं, आप लिखिए।
1: ठीक है।
2: काव्य का कवि है झवरचंद मेघाणी। राग भैरवी और ताल खेमटा। लिख लिया?
1: हाँ हाँ लिख लिया।
2: अभी ये जो रचना है वो गुजराती में है। मैं आपको लिखवा रहा हूँ। हो राजम

0: हो राज मने लाग्यो कसु बिनो रंग, ये स्थाई है। हाँ ठीक है, लिख लिया। हाँ ठीक है। और अभी पहला अंतरा, जननी ना हैया मा पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसु बिनो रंग। ठीक है, पोढ़ंता पोढ़ंता ठीक है। आगे, धोला धावण केरी धाराए धाराए, धोला धावण केरी धाराए
1: धाराए
0: पाम्यो कसुंबीनो रंग, पाम्यो कसुंबीनो

0: वहाँ एक लिख दीजिए और हो राज मने लाग्यो कसु बिनो रंग, ऐसे है वो जो अस्थाई की लाइन है वो फिर से गाना है, तो हो राज इतना ही लिख लो। ये पहला अंतरा हुआ। अब दूसरा अंतरा, बहनी ने कंठे नीतरता हालर डामा घोड़ो कसुबीनो रंग। बहनी ने कंठे
1: नीतरता हालर डामा,
0: ठीक है, घोड़ो कसुबीनो रंग। दूसरी लाइन, भीषण रात्रि केरा पहाड़ोनी त्राड़ोए चोड़ो कसुबीनो रंग। भीषण रात्रि
1: केरा पहाड़ोनी त्राड़ोए,
0: ठीक है,
1: चोड़ो कसुबीनो रंग।
0: हाँ, वहाँ हो राज इतना लिख दो। दूसरा अंतरा यहाँ खत्म हुआ। अभी तीसरा अंतरा, दुनिया ना वीरों ना लीला बलिदानों मा भवक्यो कसुबीनो रंग। दुनिया ना वीरों ना लीला
1: बलिदानों मा,
0: हाँ,
1: भवक्यो कसुबीनो रंग,
0: ठीक है। आगे, सागर ने पारे स्वाधीनतानी कबरों मा महक्यो कसुबीनो रंग। सागर ने पारे स्वाधीनता नी
1: कसुबीनो रंग।
0: और वहाँ हो राज इतना लिख दो। वहाँ पहली लाइन वो फिर से गानी है। यहाँ तीन अंतरा खत्म हुआ। चौथा, भक्तों ना तंबू रथी टपके लो मस्ती भर चाख्यो कसुबीनो रंग। भक्तों ना तंबू रथी टपके लो
1: मस्ती भर चाख्यो कसुबीनो रंग।
0: वाह। दूसरी लाइन, वहाली दिलदाराना पगनी मेहंदी पर थी चूम्यो कसुबीनो रंग। वहाली दिलदाराना
1: पगनी मेहंदी पर थी चूम्यो कसुबीनो रंग।
0: वहाँ हो राज इतना लिख दो। अब नेक्स्ट, नवली दुनिया केरा स्वप्नों मा कवियोए गायो कसुबीनो रंग। नवली दुनिया केरा
1: स्वप्नों मा कवियोए गायो कसुबीनो रंग।
0: आगे, मुक्ति ने क्यारे निज रक्तो रेडन हारे पायो कसुबीनो रंग। मुक्ति ने
1: क्यारे निज रक्तो रेडन हारे पायो कसुबीनो रंग।
0: वहाँ हो राज इतना लिख दो। आगे, पीड़ितनी आसुड़ा धारे हाहाकारे रेलियो कसुबीनो रंग। पीड़ितनी आसुड़ा
1: तारे हाहाकारे
0: रेलियो
1: कसुबीनो रंग।
0: शहीदों ना धग धगता निश्वासे निश्वासे सड़गियो कसुबीनो रंग। शहीदों ना धग धगता निश्वासे निश्वासे
1: सड़गियो कसुबीनो रंग।
0: हो राज कितना लिख दो। यहाँ ये जो काव्य है वो खत्म हुआ। मैंने पहले बताया ना कि ये जो काव्य है वो राग भैरवी पर आधारित है। भैरवी राग का स्वर मैं आपको अभी बताता हूँ। ये राग में वैसे तो 12 स्वरों का प्रयोग होता है। यहाँ जितने कोमल स्वर आते हैं वो रे ग ध नी, ये चारों स्वर कोमल है। संगीत में चारों स्वर ही कोमल है और शुद्ध भी है। ये भैरवी राग में चारों स्वर कोमल का प्रयोग है

ऋषभ शुद्ध का भी प्रयोग है, इसलिए ऋषभ कोमल और ऋषभ शुद्ध ऐसे प्रयोग हैं। ये प्रयोग ये काव्य में

ये जो क्रिया मैंने की उनको आरोह कहते हैं। अच्छा ऐसा करें, आपको थोड़ा सा तो समझ में आ गया है, तो आप मेरे साथ ही गाएंगे? हाँ। गाइए मेरे साथ।

गाने की कोशिश की और आप समझ भी गए। अब ये जो राग का अंग है स रे ग म प द प ग म द स, मगर हम उसमें ज्यादा नहीं करेंगे। ये काव्य है वो भैरवी राग में, मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले मैं गाऊं, आप कोशिश करें गाने की।

वहाँ जो ऋषभ है वो शुद्ध का प्रयोग है, सा ग रे ग, ये शुद्ध ऋषभ, स रे स, ये कोमल ऋषभ। पहले शुरू में शुद्ध का प्रयोग है, शुद्ध और कोमल दोनों का प्रयोग साथ में ही है ये काव्य में।

0: सांसें हैं, यानी ऊपर के सांसें हैं। ऊपर का सा कौन सा? सारे गामा पदनी सा, ये जो ऊपर का सा है वहां से अंतरा का उठाव है।
1: जननी ना है या मा पोड़

अभी आप सुन रहे थे गुजराती भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ, गीतकार थे जगत चंद्र मेघानी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी देर में होंगे समाचार।

0: Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally, and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kg CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lovely Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है. बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें. श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल

0: एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग

0: आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में

0: आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम ग्रिबियासिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल

0: बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

बत्ती गुल मीटर चालू, इस फिल्म में अभी आपने सुना आतिफ असलम, अल्तमश फरीदी और आशीष को। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपके लिए कार्यक्रम संबंधी विशेष सूचना। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 25 मई को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भदान की समस्या, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या फिर मोबाइल नंबर 9412225575 पर संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर की श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप स्त्री संबंधी रोग जैसे कि मासिक धर्म की गड़बड़ी, पेल्विक दर्द, यूटीआई, पीसीओएस, पीसीओडी, बांझपन आदि समस्या के समाधान के लिए परेशान है तो पूछिए प्रश्न डॉक्टर सुरंगना अग्रवाल से। ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 25 मई 2026, समय रहेगा 1:15। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म जब वी मेट से। इस गीत को अपना सुर दिया है श्रेया घोषाल ने।

आतिफ असलम को अभी आपने सुना फिल्म बजरंगी भाईजान में। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुली नंबर 1 से। इस गीत को अपने सुरों में पिरोया है पूर्णिमा और कुमार सानू ने।

कुली नंबर वन इस फिल्म से लिया ये गीत अभी आपने सुना, पूर्णिमा और कुमार सानू के गाए। इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

प्रेम हमें कठोरता से बचाता है, धैर्य हमें टूटने से रोकता है और करुणा हमें खुद तथा दूसरों को समझने की शक्ति देती है। जब ये तीनों गुण साथ होते हैं तो कठिन अनुभव भी बोझ नहीं लगते, वे आत्मविश्वास के सुंदर अध्याय बन जाते हैं। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ खुशबू। युवाणी सुन रहे सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, नमस्कार। साथियों, प्रतिदिन की तरह हम आपके लिए कुछ एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं और आज की हम जानकारी दें, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

स्वागत है आपका इस छोटे से अंतराल के बाद। और अब हम बात करते हैं आज की बात की, यानी कि आज का हमारा जो विषय है सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन विषय है। तो हम ये जानते हैं कि सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन का अर्थ क्या है। ऐसे में अपराधों में कानूनी कार्रवाई और न्यायिक जो प्रक्रिया चलाना होता है, जो धर्म, जाति, भाषा, समुदाय या संप्रदाय के आधार पर नफरत, हिंसा या भेदभाव फैलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसमें अपराधियों के खिलाफ पुलिस जांच, मुकदमा, साक्ष्य प्रस्तुत करना और न्यायालय द्वारा दंड देना भी शामिल होता है। अब जान लेते हैं ऐसे अपराध क्या होते हैं। जैसे कि सांप्रदायिक अपराध वे अपराध हैं जिनमें किसी विशेष धर्म या समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है, जैसे दंगे और हिंसा, धार्मिक स्थलों पर हमला, नफरत फैलाने वाले भाषण, अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काना। और अब जान लेते हैं अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन क्या होता है। अभियोजन वो कानूनी प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिसके माध्यम से राज्य अपराधी के खिलाफ अदालत में मामला चलाता है। इसका उद्देश्य अपराध सिद्ध करना और दोषी को सजा दिलाना होता है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से शामिल होते हैं जैसे पुलिस, सरकारी वकील, न्यायालय, गवाह और पीड़ित।

इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, अभियोजन की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है? सबसे पहले न्याय दिलाने के लिए, यानी कि पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा का भरोसा ये दिलाता है। अपराध रोकने के लिए, यानी कि कड़ी सजा से भविष्य में ऐसे अपराध कम होते हैं। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, यानी कि समाज में शांति और भाईचारा कायम रहता है। सांप्रदायिक अपराध केवल कानून तोड़ने का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि मानवता और राष्ट्रीय एकता पर हमला होता है। इसलिए इनके लिए सख्त और निष्पक्ष अभियोजन आवश्यक है। न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन और समाज सभी को मिलकर ऐसे अपराधों को रोकने और दोषियों को दंड दिलाने के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि देश में शांति, सद्भाव और भाईचारा बना रहे।

दोस्तों, मेहनत की राहों पर चलना सीखो, अपने सपनों को सच करना सीखो। कल का भारत तुमसे ही तो चमकेगा। स्टार्टअप अपना कर आगे बढ़ना सीखो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का जो युग है वो नवाचार, तकनीक और आत्मनिर्भरता का युग है। हर युवा अपने सपनों को साकार करना चाहता है और अपने हुनर के दम पर अपनी नई पहचान बनाना चाहता है। ऐसे समय में स्टार्टअप केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि नए भारत की सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। स्टार्टअप को अपनाने का अर्थ है नए विचारों को अवसर देना, रोजगार पैदा करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। अब जानते हैं स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप एक ऐसा नया व्यवसाय होता है जो किसी नई सोच, तकनीक या समस्या के समाधान के आधार पर शुरू किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, केवल लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज की समस्याओं का सरल और आधुनिक समाधान देना भी होता है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, तकनीक, परिवहन और ऑनलाइन सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में स्टार्टअप तेजी से आगे की ओर

बढ़ रहा है। इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत दुनिया में सबसे बड़े स्टार्टअप देशों में गिना जाता है। युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल सही दिशा और अवसर की। स्टार्टअप को अपनाने से युवाओं को पहले तो रोजगार मिलता है, आत्मनिर्भर भारत का सपना होता है वो मजबूत होता है, तकनीक जो है वो विकास के पथ पर आगे बढ़ती रहती है, छोटे शहरों और गाँव में भी अवसर इसके बढ़ते हैं, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पहले लोग केवल नौकरी पाने का सपना देखते थे, लेकिन अब युवा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। यही बदलाव भारत की सबसे बड़ी ताकत है। देश के युवा स्टार्टअप की रीढ़ हैं। यदि युवा अपने कौशल, शिक्षा और अनुभव का सही उपयोग करें तो वे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। एक छोटा सा विचार भी बड़े व्यवसाय का रूप ले सकता है। खुद पर जो विश्वास जगाए, हर मुश्किल से राह बनाए। नौकरी ढूंढने से बेहतर है जो युवा नया स्टार्टअप अपनाए।

कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, सुनी हर महफिल हो, कोई ना मेरे साथ हो और तुम आओ।

दोस्तों, वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल में किसी कोने में हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। वो यादें न तो बोझ बनती हैं, न आँखों को नम करती हैं, बल्कि अकेलेपन में भी साथ निभाती रहती हैं। आज के युवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस गर्मी से अपना पूरा बचाव जरूर रखें। खूब सारा पानी पिएं और खुद को ढक के रखें, और हाँ, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बाहर निकलें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट

0: जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।

शाम 6:15 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा शुद्ध बीज को कैसे पहचाने और गर्मियों में गहरी जुताई के लाभ विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप एक भेंट वार्ता भी सुन सकते हैं जिसका विषय होगा धान की नर्सरी तैयार करने में सावधानियां एवं सुझाव। इस विषय पर जानकारी देंगे सुधीर अग्रवाल और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे संध्या वंदन और शाम 7:05 पर प्रसारित करेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। आज आप आनंद लेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत देवकी वासुदेव विवाह के प्रसंग का। कथाकार होंगे गोस्वामी राम गोपाल। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहाने प्रसारित किया जाएगा शाम 7:31 पर। कुछ फिल्मी तराने आप सुनेंगे रात 8 बजे और रात 9:15 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे विजयपथ फिल्म के चंद नगमे। समय याद रखिएगा रात 8:30। कुछ देश गान प्रसारित किए जाएंगे शाम 6:10 पर और रात 8:20 पर।

0: ये थे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल।

0: Avaz.
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं रूप किशोर शर्मा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम। भैया गर्मी तो खूब ही पड़ रही है, पर दोपहर पीछे ते जो दो चार बूंदा बांधी वही है बिनते कछु राहत मिली। पर भैया राहत मिले चाहे गर्मी पर है, पर हम किसान भैयान को तो अपनी खेती बाड़ी को इंतजाम करनो ही करनो। और यह समय जो हमारे किसान भैया धान की बुवाई के काज नर्सरी लगा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, और बुवाई चाहे धान की होए, चाहे रबी की फसल की होए, चाहे जायद की फसल की होए, सबते मुख्य काम होवे बीज को। भैया अच्छे बीज की पहचान कैसे करें, क्योंकि बाजार की धमा चौकड़ी में और बीजन की तरह तरह की वैरायटी की भरमार में शुद्ध बीज की पहचान हमारे किसान भैयान को ना होए। तो शुद्ध बीज की पहचान करवे के काजें सबसे पहले हमें एक विधि अपनानी चाहिए, या को कहें हम पानी की परीक्षण विधि। जा विधि में हम कऊ कटोरा में या कऊ लोटा में पानी ले लें और या में कछु बीज डाल दें। जो बीज भारी होएगो, स्वस्थ होएगो, वो बर्तन की तली में बाकी तरिए में बैठ जावेगो, और जो खोखलो या कीड़ा लगो या सूखो बीज होएगो वो पानी की सतह पे तैर भी लग जावेगो। और या चीज़ ते आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया अगर हम काऊ पैते एक मन बीज ले रहे हैं तो वहाँ में कितनो अच्छा होएगो और कितनो वहाँ में बीज खराब होएगो। दूसरो होए कपड़ा विधि, जहाँ में 100 बीज लें, उनको गीले सूती कपड़ा में या जूट की बोरी में लपेट लें और इनको 4-5 दिना तक अंधेरी और गर्म जगह पर रखें। कहवे को मतलब कि सूर्य को प्रकाश वहाँ में ना आवे, और 5 दिना बाद देखें कि बिनमें थी जो

सौ बीजे, सौ बीजन में ते कितने बीजन में कुल्ला आयो है। अगर वामे ते 90 ते 95 बीजन में कुल्ला आयो है तो ये समझो कि वो बीज बढ़िया है, और अगर 90 ते कम में आयो है तो वो बीज बेकार है। क्योंकि भैया जितनो अच्छो बीज होएगो उतनी ही पैदा अच्छी होगी, क्योंकि बीज में ती तो अंकुरण फूटेगो।

फूटेगो, असली और शुद्ध बीज अपने जो प्राकृतिक रंग रूप होए वहाँ में एक समान हो गए, लेकिन जो नकली बीज होएगो वहाँ पे काऊ तरीका को कोई केमिकल या पाउडर कछु लगो हुए होएगो, और वह नकली बीज को आप अपने हाथन में लेके और दोनों हथेलियों के बीच में वाकू रगड़ें, तो वाको जो नकलीपन पाउडर या जो भी फफूंदी नाशक जो भी वहाँ में लगो हुए होएगो वो तुम्हारी हथेली पे आ जावेगो और वाको असली रूप निकल आवेगो। दूसरी बात, जब हम बाजार में जामें और बाजार में हम कहो दुकानदार के पास जामें, तो दुकानदार से जब हम बीज ले में तो प्रमाणित बीज ले में, और जो लाइसेंस प्राप्त डीलर होए बातें बीज ले में, और बीज लेते समय पक्को बिल जरूर लें, दो चार दस पाँच रुपए के पीछे, ऐसा न होए बहुत से दुकानदार डर पाए दें बोले पक्को बिल लेगो तो इतने पैसा को बीज है और बिल नहीं लेगो तो इतने पैसा को बीज है, भले हूँ 50 रुपए ज़्यादा चले जामें लेकिन पक्को बिल जरूर लें। जब हम बाज़ार को जामें तो हमें कट्टान पे या थैली जो होमें या जो 10 किलो के पैकेट या 20 किलो के पैकेट जो भी हों उन पे 3 तरह के टैग लगे मिलें, अगर पीलो टैग है तो ये समझो कि ये प्रमाणित बीज है जो किसान भैयान को बुवाई के काजें दियो जाए रहो, अगर वहाँ पे सफ़ेद टैग है तो बाकू हम प्रजनक कहवे को आसे ब्रीडर बीज होए जो सबसे ज़्यादा शुद्ध मानो जावे। तीसरो टैग लगो रे पीलो पीले रंग को, जी पीले रंग को जो टैग होए या को मानना होए कि जी फाउंडेशन को बीज है, तो इन बातन ते आप बाज़ार में शुद्ध बीज की पहचान कर सकें, और भैया हमेशा शुद्ध बीज और प्रमाणित बीज ही डालें, क्योंकि अगर हमारा बीज खराब होगा तो हमारी खेती में अंकुरण नहीं होगा, जब अंकुरण नहीं होगा तो हमारी पैदा अच्छी नहीं होगी। अब बात करें भैया, जैसो कि आप सब जानो ही हो अधिक मास को महीना चल रहा है, और अधिक मास के महीना को पाठ पूजा के काजें धर्म पुण्य के काजें बहुत ही शुभ मानो जावे, हमारे अभिजांचल में तो 7 बार 9 त्यौहार वाली कहावत होए, और पूरे ब्रज 84 कोस में परिक्रमा लगे, लोग गिरिराज जी की परिक्रमा दें, वृंदावन की परिक्रमा दें, पूरे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दें, पर भैया हम तो आपको अपने जा कार्यक्रम के माध्यम से अधिक मास के मेला को आनंद दिवा सकें, जा लोकगीत को अपने स्वर से सजायो मेघ श्याम ने के आयो अधिक मास को मेला, तो भैया सुनो जा लोकगीत को।

0: आयो अधिक मास को मेला चलोरी करीवे परिक्रमा, जालू गीत को अपने स्वर ते सजाया उम्मीद श्याम ने। भैया हमारे किसान भैयान के पास जिनके पास पानी के साधन अच्छे हों, नहर बम्बे कुलावे बिजली नलकूप जो भी पानी के साधन अच्छे हों, वो खरीफ की फसल में जायद की खेती में सॉरी खरीफ की फसल में धान की खेती प्रमुख रूप से करो करें। यह समय हमारे किसान भैया धान की नर्सरी डारवी के काजें तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ में हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन से सुझाव हमारे काजें बहुत ही ज़रूरी हों, जाके विषय में आज हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं। धान की नर्सरी तैयार करवे में सावधानी और सुझाव। आज के जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे प्रगतिशील किसान सुधीर अग्रवाल जी हैं और इनते बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह। धान की नर्सरी तैयार करने में सावधानियां एवं सुझाव, तो भैया सुनो जा भेंट वार्ता को।
1: किसान भाइयों, अब देख रहे हैं कि धान की नर्सरी तैयारी करने का समय है और नर्सरी अच्छी होगी, पौध अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर फसल भी अच्छी हो जाएगी। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, कौन सी जानकारी ऐसी है जिसका उपयोग में लाना है जिससे हमारी नर्सरी की पौध अच्छी हो। आज हमारे साथ हैं सुधीर अग्रवाल साहब। आप हमारे वरिष्ठ किसान हैं, जागरूक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। सुधीर साहब, आपका हमारी इस चौपाल में स्वागत। राम राम।
2: राम राम साहब। राम राम जी।
1: जी तो बताओ, जो है धान की जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं हमारे किसान भैया या करेंगे अब, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है?
2: ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपने आज के दिन हमको यहाँ बुलाया, क्योंकि ये जो समय आया है धान की नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त समय, अब इसका ये मई का पूरा महीना जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त है।
1: जी जी।
2: क्योंकि जो किसान मई के महीने में धान की नर्सरी डालेगा तो उसका फायदा उसको जो है आलू की खेती करने के लिए और सरसों की खेती करने के लिए फायदा होगा,
1: मतलब खेत जल्दी खाली हो जाएंगे। जी।
2: अब उसके बाद तो वैसे नर्सरी डालने का क्रम जो है आज से लेके और क्या कहते हैं 15 जून 20 जून तक 25 जून तक चलेगा, और जिसको जब

0: सुविधाएं हो उस समय वो अपने खेत के हिसाब से नर्सरी डाले
1: जी।
0: मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि बासमती धान के बारे में, तो धान बासमती के लिए जो है अब जो है नर्सरी डालने का उपयुक्त समय उन वैरायटियों के लिए है जो हमें दो वर्ग में बांट रखा है हम लोगों ने, एक तो जिन किसानों को आलू लगाना है और दूसरा जिन किसानों को पूरी लेट जो वैरायटियां हैं जो बासमती की गुणकारी बड़ी वैरायटियां जो ज्यादा महंगी बिकती हैं उनका भी उपयुक्त समय है। तो दो वर्गों में बटा हुआ है जैसे 1509 1692 और 1885 और 1847 इन वैरायटी ये चार वैरायटी हैं, इनका तो अब समय चल रहा है कि हम उसकी नर्सरी डाल दें। अगर हम उसकी नर्सरी अब डालेंगे तो हमारी आलू की फसल लेट नहीं होगी और सरसों की फसल लेट नहीं होगी।
1: ठीक है,
0: वैसे इन वैरायटियों की हम नर्सरी जो है 20 जून तक डाल सकते हैं।
1: तो ये जो चार वैरायटी आप जिनका नाम ले रहे हैं ये अपने ब्रज क्षेत्र के लिए उपयोगी है,
0: ये सबसे ज्यादा उपयोगी हैं और यहाँ के हम लोग जो किसान हैं इन वैरायटियों से सबसे ज्यादा फलीभूत हुए हैं। 1509 1692 1847 और पिछले साल नई वैरायटी आई है 1985
1: जी
0: नई वैरायटी आई है। पर इससे आपको बताएं कि दो तरह का लाभ हुआ हमारे किसान भाइयों को कि इसको उन्होंने अगेती लगाया, अगेती लगाने के बाद जो है चेन वाली कम्बाइने इफरात की आ गई, चेन वाली कम्बाइन से इसको जो है 100 दिन बाद कटवाया और कटवाने के बाद मंडी में बेच दिया और मंडी में जब बेचा तो इसमें 25% 22% मॉइस्चर था और उसको 2600 रुपए 2600 रुपए किसान को दाम मिल गए और खेत में जो प्याली रह गई उसको जो है मशीन कुछ तो जमीन में मशीन ने गाड़ दिया, वह किसान ने रोटावेटर लिया और उसमें पानी भरा रोटावेटर से वो घोल दिया तो उससे जो है जो स्ट्रॉ था धान का
1: एक
0: तो उसमें आग नहीं लगानी पड़ी, दूसरा उसमें उसने कंपोस्ट बना दिया, कंपोस्ट बनने से वो जमीन मजबूत हो गई हमारे जैसे हमारा मोहद्दीनपुर गांव है इस तरह से जो वाटर लॉकिंग के एरिया है जैसे क्या कहते हैं आपका नरी है सेमरी है जिन गांवों में पानी ज्यादा भर जाता है तो उन किसानों को एक तो धान की फसल मिल गई और नर्सरी में जो हम तैयारी करें उसके लिए हम पहले डालें उसमें गोबर की खाद
1: जी।
0: एक ट्रॉली करीब करीब 900 गज में डाल दें और गोबर की खाद नहीं है तो कंपोस्ट डाल दें, कंपोस्ट भी नहीं क्योंकि कंपोस्ट आजकल जो है सब कंपनियों का आ रहा है जैसे NFL का कंपोस्ट आ रहा है तो उस तरह से उसमें दो कट्टे जो है बीघे के हिसाब से क्या कहते हैं कंपोस्ट डाल दें। अगर कंपोस्ट भी नहीं है तो कहीं से केंचुए की खाद ले लें और कुछ नहीं है तो फिर कोई बात डालने की जरूरत भी नहीं है। फिर उसमें अपना जो है मिट्टी को पहले टेस्ट करा लें केवी के जाके
1: मिट्टी पानी चाहिए
0: पानी टेस्ट करा लें और उसमें जितने उर्वरक की आवश्यकता है तो उसमें उर्वरक डालने और डालने के बाद सबसे बड़ी चीज है नर्सरी में जो बीज बोए उस बीज का शोधन जरूर कर लें क्योंकि बीज का शोधन कर लिया तो जैसे जो धान में बासमती में बकानी रोग आता है तो बकानी रोग नहीं आएगा,
1: मतलब वो बीज से ही आता है
0: जी
1: और बीज शोधन
0: और जमीन तो... से जमीन से भी आता है
1: जी, मिट्टी
0: तो
1: मिट्टी
0: से आता है तो उसके लिए जो है ट्राइकोडर्मा ले लें। ट्राइकोडर्मा जिला कृषि अधिकारी के यहाँ आधी छूट पे मिल रहा है, अगर छूट पे नहीं मिले तो उसको खरीद लें, 100 रुपए किलो नहीं मिलेगा 200 रुपए किलो मिलेगा। और उसके लिए किसान भाई क्या करें कि 1 किलो ट्राइकोडर्मा ले आए, 4 कट्टा गोबर की खाद डालें पेड़ की सीरक में, उसमें ट्राइकोडर्मा मिला दें और ट्राइकोडर्मा मिलाने के बाद उसमें पानी छिड़क दें और गीले टाट से उसको ढक दें, फिर उस 4 दिन बाद फिर उसमें पलटाई कर दें और पानी फिर छिड़क दें तो उसमें नीली नीली फंगस आ जाएगी। तो इसके मायने ये हुआ कि हमारा ट्राइकोडर्मा असली था और हमारा पर्याप्त मात्रा में ट्राइकोडर्मा बन गया। तो हमें जितने बीच में नर्सरी लगानी है इस खाद मिले हुए ट्राइकोडर्मा को उसमें डाल दें तो हमारी जो है जमीन के द्वारा कोई बीमारी नहीं आएगी
1: जी। तो एक तो यह है कि उसमें खाद डाल लें, एक उसका पानी और मिट्टी की जांच करा लें और उसका बीज का शोधन कर लें और ये ट्राइकोडर्मा मिला लें, तो ये इतना काम कर लेंगे तो फिर हमारी अच्छी पौध

0: तो यार
1: अच्छी
0: उन्हें
1: पोती
0: की
1: तैयार
0: काफी
1: होगी
0: गारंटी हो गई।
1: जी, 90% गारंटी हो गई।
0: हाँ
1: और इसमें एक बात का जरूर हमारे किसान भैया ध्यान रखें, जितने किलो बीज उतने किलो पानी में भिगोएं।
0: ठीक
1: ये
0: है।
1: नहीं है कि अपनी ट्यूबवेल की हौदिया में 20 किलो बीज डाले आए
0: हाँ
1: के साहब मैंने तो भेजे लो वहां में,
0: हाँ
1: का
0: हाँ
1: करें और दवाई भी डाल ली वहां में, दवाई जो है पोखरे में पहुंच जाएगी
0: हाँ
1: और उसका कोई लाभ नहीं
0: जी।
1: होगा।
0: तो कितने समय तक उसको भिगोना है?
1: उसको जो है हमको 36 घंटे भिगोना चाहिए क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है,
0: हाँ
1: बीज का पानी बिल्कुल मर चुका है।
0: हाँ
1: पहले जो अमूमन मौसम अनुकूल रहता था तो हम 24 घंटे भिगोते थे,
0: अब
1: अब
0: छत्तीस
1: जो है
0: घंटे का मतलब
1: 36 घंटे उसको भिगोना चाहिए, जिससे भिगोएंगे 36 घंटे तो दवाई रोम रोम उसमें अंदर तक पहुंच जाएगी
0: बीज में
1: बीज में।
0: है। और फिर उसको जो हमारी बेड बनी हुई है, खाद
1: जी
0: डाल दी है उसमें, उसको उस पर उसको छिड़क देना और
1: उसे उसके
0: फिर
1: बाद उसको जो है बोरे गीले बोरे में भरकर 48 घंटे के लिए रख दें। जब मक्खी सी उस पे आ जाए, नकुआ आ
0: मैं
1: जाए,
0: हल्का
1: तो
0: सा अंक।
1: शाम के टाइम उसमें अपनी क्यारी में छिटक दें उसको,
0: हाँ
1: और क्यारी में छिटकने के बाद तीसरे दिन उसमें पानी लगाएं, पानी लगाएं शाम के टाइम। अगर आपने दिन में पानी लगा दिया तो टेम्परेचर जो है 42, 43, 44 डिग्री
0: हाँ
1: जा रहा है
0: हाँ
1: तो पानी गर्म हो जाएगा तो
0: वो बन जाएगी, उमस
1: वो
0: बढ़ जाएगी
1: उमस
0: और
1: बन जाए,
0: पौधा मर
1: पौध मर
0: जाएगा,
1: जाएगी
0: पौध मर
1: आपकी।
0: जाएगा, बड़ा मतलब कोमल है वो, कुमला
1: फिर
0: जाएगा
1: उसके
0: वो।
1: बाद जो है जब हमारी 15 दिन की नर्सरी हो जाए तो कोई खरपतवार नाशी, अगर खरपतवार हो रहा है तो उसमें खरपतवार नाशी डाल दें, या पहले ही उसमें जो है जिस दिन बुवाई करी है तो कई कंपनियों के नए खरपतवार नाशी आ गए हैं, उसकी 3 ग्राम मात्रा उसमें डाल दें। और या फिर उसके बाद जो है एक काम जरूर करें, 15 दिन बाद कोई भी कीटनाशक लेके 2 ml/L के हिसाब से अपनी टंकी में भर के उसमें स्प्रे कर दें, जिससे कि इस क्या कहते हैं जो स्टेम बोरर है अगर उसका प्रकोप होना शुरू हुआ है तो वो मर जाए,
0: जी मतलब ये एहतियात है
1: एहतियात
0: कि
1: है,
0: भाई वो आ सकता है, इसलिए इतना आप कर लेंगे तो आपकी पौध सुरक्षित रहेगी,
1: स्वस्थ हो जाएगी।
0: संरक्षित रहेगी
1: और
0: ना।
1: सबसे बड़ी बात क्या है कि अधिक पैदावार लेने के लिए हम जो है 18 दिन से 22 दिन की पौध लगा दें, क्योंकि जो किसान भाई जो है कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि भाई अपनी ससुराल चले गए,
0: हाँ
1: कहीं रिश्तेदारी में चले गए और पौध 1 महीने से ऊपर की लगाएंगे तो उनकी पैदावार कम आएगी। सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो है 110 दिन की वैरायटी है, जितने दिन फालतू आप खेत में रखेंगे
0: हाँ पौध के
1: उत
0: रूप में
1: पौध के
0: रखेंगे
1: रूप में
0: उतना
1: तो
0: उधर बढ़
1: उतना
0: जाएगा।
1: उधर जो है आप समय कम रह बचेगा
0: अच्छा,
1: उसको।
0: चलते चलते आपने प्रोसीजर बता दिया, तरीका बता दिया, कैसे बीज डालना है, कैसे उसको बड़ा करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। बीज अच्छा हो, बीज सही वैरायटी का हो और बीज शिनाख्त का हो, ये भी तो बहुत जरूरी है। इसके लिए कहाँ कहीं कहीं किसान भाई इसमें
1: देखिए
0: मात खा जाते
1: देखिए
0: हैं
1: नहीं
0: इसमें।
1: नहीं मात खाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे मथुरा जनपद में राया फार्म रिसर्च सेंटर जो है,
0: हाँ
1: क्योंकि हर जिले में रिसर्च सेंटर नहीं
0: नहीं
1: है,
0: नहीं होता।
1: हमारे हमारे
0: ये राय वाली बात नहीं है अच्छा।
1: हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जिले में राया जैसा रिसर्च फार्म केवल मथुरा जिले में, पूरे मंडल में क्या उत्तर प्रदेश में 4-5 रिसर्च फार्म हैं,
0: जी
1: उनमें से हमारा राया फार्म जो है एक रिसर्च फार्म है। और सहयोग की बात यह है कि अंग्रेज बहादुर ने इतना बढ़िया जगह बसाया, माट ब्रांच गंगा नहर के किनारे है, और अब तो वर्तमान में जो पूर्व में डिप्टी डायरेक्टर थे उन्होंने राज्य सरकार से पैसा लेके उसकी बढ़िया बाउंड्री करा दी है, टीन शेड बनवा दिया है, और वहां उनकी देखरेख में इस साल फाउंडेशन बीज बनाए,
0: जी
1: और जो हमारी धान की प्रजातियां हैं 1692 का फाउंडेशन फर्स्ट है, और 1847 का नहीं 1718 का फाउंडेशन फर्स्ट है, और 1985 जो नई वैरायटी है बिल्कुल
0: जिसके आप जिक्र
1: जिसका मैं
0: कर
1: आपसे जिक्र कर रहा था, उस वैरायटी इमीजा थाइपर लगाने के बाद इतना बढ़िया प्रोडक्शन देती है, उसका जो है यहाँ पर्याप्त मात्रा में हमारे जिले पे 250 क्विंटल के करीब जो है फाउंडेशन फर्स्ट का बीज उपलब्ध है। इसलिए किसान भाई राया फार्म के बीज को अपने बीज स्टोर से लें या जिला कृषि अधिकारी

0: से संपर्क करें या डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च से संपर्क करें। और मथुरा जनपद के किसान हम लोग सब इतने सौभाग्यशाली हैं, इनके पास तीन वैरायटियों का जो है आधारीय बीज है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का बीज है और बहुत सस्ती दर पे है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट 67 रुपए किलो का है और उसमें आधी छूट मिल रही है, मुफ्त में सरकार बीज दे रही है और किसान उसका फायदा उठाएं।
1: सही बात है, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। धान के लिए कम से कम अच्छा बीज मथुरा जिले में उपलब्ध है, चाहे आप राया कृषि फार्म चले जाएं, चाहे जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय चले जाएं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के यहाँ चले जाएं, तो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिली हुई है, सस्ते में मिली हुई है, बहुत सारी तो निःशुल्क है। तो भैया धान की अच्छी नर्सरी बनाएं, अच्छी पैदावार लें, और अगर ये सब होगा तो फिर आपकी आय भी बढ़ जाएगी, समाज भी सुधरेगा, आप भी सुधरेंगे। सुधीर जी, आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धान की नर्सरी तैयार करने में सावधानी और सुझाव जामे विशेषज्ञ सुधीर अग्रवाल, जो प्रगतिशील किसान ने, और इनसे बातचीत कर रहे ओपी सिंह। भैया, गर्मी में गहरी जुताई के कौन कौन से लाभ हों? गर्मी में जब खेत खाली पड़े रहें और इनकी गहरी जुताई करी जावे, तो वह गहरी जुताई को जो फायदा होए वो आगे बोवे वाली फसल में वा को लाभ मिले, माटी की सेहत सुधरे और पैदावार में बढ़ोतरी होए। गर्मी में गहरी जुताई करवे ते तेज धूप माटी के भीतर गहराई तक पहुँचे और जो नुकसानदायक कीड़ा मकोड़े, उनके अंडा, लार्वा या प्यूपा जो भी हों वे नष्ट है जामे। खरपतवार और मोथा जैसी घास की जड़ ऊपर आ जाएं और चिलचिलाती धूपते वाकी जड़ नष्ट है जामे और अगली फसल में खरपतवार और घास की समस्या कम है जावे। और जब खरपतवार और घास की समस्या कम है जावे तो फिर पैदा अच्छी होए, और पैदा अच्छी हो तो फिर मन करे ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा को। तो अब सुनो कृष्णा कुमारी माथुर के स्वर ते सजायो जी लोकगीत के, ब्रज 84 कोस में चार गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव।

यही ब्रजधाम है, विश्व को प्राण है। जा लोकगीत को अपने स्वरते सजायो कृष्णा कुमारी माथुर ने। और भैया यही लोकगीत के संग ही संग आज को किसान वाणी कार्यक्रम अब संपन्न हुए। सब भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे रूप किशोर शर्मा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

अनुराधा पौडवाल, हरिहरन और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना चार धाम फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम का अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और साथियों के स्वरों में। फिल्म का नाम है देव।

0: अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वरों में आपने सुना सूर्यपुत्र शनिदेव फिल्म का ये भजन। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत देवकी वासुदेव विवाह का प्रसंग। कथाकार हैं गोस्वामी राम गोपाल।
1: कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजत प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। प्राचीन काल में मथुरा में यादवपति राजा शूरसेन हते। वे मथुरा मंडल सूरसेन मंडल को राज्य शासन करते हते। वाई समय से मथुरापुरी यदुवंशी राजन राजधानी बह गई। मथुरापुरी में सर्वदा हरि भगवान निवास करे हैं। यमुना किनारे मधुपुरी मथुरा परम सुहावनी नगरी है। यहाँ के राजा श्री उग्रसेन हते, जो नीति धर्म सो राज्य शासन करते हते। वाको बेटा कंस अति पापी असुर बुद्धि सबको दुख देवे वालो हतु। वाने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाए के स्वयं मथुरा को राजा बन गयो। वाके चाचा को नाम देवक हतो। देवक की पुत्री को नाम देवकी हतो, जो अति सुंदर सुशील हती। राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को विवाह यदुवंशी राजा सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी के संग कियो। कंस ने देवकी को विवाह बड़े धूमधाम सो कियो। देवक को अपनी पुत्री सो अति प्रेम हतो, सो कन्या को विदा करते समय वाने दहेज में सोने के तारन सो अलंकृत 400 हाथी 15,000 घोड़े 1,800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सजी धजी 200 सुकुमारी दासियां दईं। राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करवे के ताई बाकी रथ के घोड़न की रास अपने हाथ में पकड़ के स्वयं साल ली और सारथी बन के रथ को हाँक के ले चलो। वो मनी मन बहन के विवाह सो प्रसन्न फूलो फूलो रथ को हाँक के ले जा रहे हो। वाई समय आकाशवाणी भई, तब रथ चढ़ाए देवकी आप भयो रथवान, पहुंचावन अति हेतु सो चलो सहित अभिमान। तेही क्षण गिरा विशाल होत वही आकाश से, हे कंस को काल देवी को देवकी को सुत आठवो। पथि प्रग्रहणम कंस भाव्याद शरीर वाग अस्या सत्वाम अष्टमो गर्भो हंता वाम देशे अबुधो। अरे मूर्ख, जाकू तू रथ पे विवाह के ले जा रहे हो है, वाही के आठवें गर्भ की संतान तोकू मार डालेगी। जा आकाशवाणी को सुन के कंस चकित भौचक को सो रह गयो। मन की हुलास मिट गई, देवकी को अपनो शत्रु मान्यो। अभिमानी रथ से उतर गयो, तलवार म्यान से खींच लई और हाथ में लेके और देवकी की चुटिया पकड़ के अपने बहन देवकी को रथ से नीचे पृथ्वी पर खींच लियो। बाकू जान से मारवे के ताई अभी अपने दुख के मिटा के अभी मैं आके मार के अपने दुख को मिटा लूंगू। न रहेगो बांस न बजेगी बांसुरी, जे मर जाएगी तो मेरो काल पैदा ही ना होगो। मैं सुखसों जीवन व्यतीत करूंगो। वास्तव वाने अपनी अबला ब्याही छाई बहन नारी जात की हत्या मर्यादा को कुछ भी ध्यान नहीं दियो। जैसे ही कंस ने मारवे के ताई तलवार उठाई, तक्षण वसुदेव जी हाथ जोड़ के कंस के सामने आए के बोले, हे राजकुमार, आप यदुवंश के होनहार वंशधर यशस्वी राजा हो, बड़े बड़े शूरवीर राजा आपके गुणों की वीरता की सराहना करे हैं, आप कुल के भूषण हैं और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। देवकी आपकी बहन है, दूसरे ये कन्या नारी जात अबला गाय है, तीसरे विवाह को शुभ अवसर है, अभी विवाह की हल्दी लगी है, सुहाग सिंदूर लगे हुए, अतः हत्या करना महापाप है। नारी अबला बहन की हत्या आप जैसे वीर को शोभा दे है। तुम देवकू को मारोगे पर तुमको भी मानने वालों कोई ना कोई होगो। तुम अगर नहीं हो तुम्हारे मृत्यु भी है, तुम अमर नहीं हो। देवकी को मार के भी तुम जीवित नहीं रहोगे, इसलिए जो अपनो कल्याण चाहे है वो काउसों बैर ईर्ष्या द्वेष द्रोह ना करे है, क्योंकि जीव कर्म के

0: जीने जो काउ सो द्रो ईल स्वादेश करेगो वो या जीवन के आरंभ में और जीवन के बाद परलोक में भी भयभीत होना पड़ेगो। हे कंस, यह तेरी बहन छोटी अबला दीन है, यह तो तेरी कन्या के समान है। जाको अभी ब्याह भयो है, मंगल चिन्ह अभी उतरे नहीं है। ऐसी दशा में तेरे जैसे सूरवीर दीन वत्सल भाई को क्या बेचारी को वध करना उचित नहीं है? जा प्रकार से बसुदेव जी ने कंस को भेदनी से बहुत समझायो, किंतु वह क्रूर राक्षसन को अनुयायी अपने घृणित संकल्प को नाश न करो। वो देवकी से देख जब बसुदेव जी ने देखो को हट देखो तो संकट के समय धैर्य से काम करना चाहिए, ऐसा सोच करके बुद्धि से काम लेना चाहिए, तब क्यों मृत्यु भी टल जाए। हे राजकुमार, वृथा देवी की को जन मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारो, सब सुत या के हमसे लीजिए और जीवन दान को प्रभु दीजिए। यह बात हम तुमसे भाके, चंद्र सूर साक्षी दे राखे, हर तीनों चाहे सो होई और ते मिटावत हार न कोई। तुम्हारो देवकी सो कोई बेर ना है, जाको पुत्र तुम्हारो शत्रु को काल है जैसी आकाशवाणी भई है। अतः मैं जासो उत्पन्न सब पुत्रन को लायके आपको सौंप दूंगो। मैं सूर्य चंद्रमा को साक्षी करके आपको वचन दूं कि एक क्रूर वसुदेव जी के वचन पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दियो, परंतु मृत्यु के कारण वसुदेव देवकी के हाथ पैरन में बेड़ी डार के बंधक बनाए के कारागार में डाल दियो। प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, ले वसुदेव कंस पे आयो, बालक देख कंस हंस दीनो, इनको कुछ अपराध न कीनो, आठवो गर्भ शत्रु है मेरो, सो दीजिए तुम मोह सबेरो। हे वसुदेव जी, आपने पहले बेटा को लेके कंस के पास गए तो कंस बालक को देख के हंस दियो और बोलो और मेरे हे मारा वसुदेव जी, यार ने मेरे कोई अपराध ना कियो, मेरो तो आठवो गर्भ शत्रु है, तुम बाकू लायक है और जब हो तब मुझे दियो, मेरे पास ले आई हूँ। वसुदेव जी खुशी खुशी लौट आए, देवकी जी बड़ी प्रसन्न भई, देवतान को बड़ा दुख भयो, चिंता भई कि अब या दुष्ट कंस को अंत कैसे होएगो, अवतार कैसे होएगो। देवतान ने नारद को स्मरण कियो, नारद जी आए गए, प्रार्थना करी कि पृथ्वी पर कंस अपराध ना करेगो तो अवतार कैसे होएगो, आप कंस को उल्टी पट्टी पढ़ाओ। नारद जी झट से मथुरा कंस के पास पहुंच गए। नारद जी ने पृथ्वी पर आठ लकीर खींची और बोले, आठ लकीर खींच दिख रही और गिनती में सब आठों आई, जो यह प्रथम ही आठवों हुई, देव चरित जानू कब कोई, तेई क्षण बालक फेर मंगायो, ले वसुदेव दुखी आयो, लियो मूड गही कर में ताही, पटको भाव शरीर पर दाही, याही विद सत बालक मारे, माँ पिता अति भय दुखारी। इन लकीरन को आगे पीछे सो गिनती करो तो आठ ही आमे हैं, पहलो आठवों है सके, क्योंकि विधि को विधान अति चातुरीपूर्ण है, वाकू कोई ना समझ सके है, न जाने कौन सो आठवो है। नारायण नारायण करते भय नारद जी अंतर्दान है गई। कंस की बुद्धि चकराई गई, माने तुरंत बालक को मंगवायो, बसदेव जी तुरंत लेके आए और तक्षण बालक को हाथ में लेके और शिला पे पटक के मार दियो। जा प्रकार सो कंस ने बसदेव जी के छह पुत्रन को शिला पे पटक पटक के मार डाली। बाल हत्या से पृथ्वी के हाहाकार मच गई, पृथ्वी कांप उठी, पृथ्वी गाय को रूप धर के ब्रह्मा शिव जी देवतान के संग बैकुंठ में नारायण के धाम पहुंची, प्रार्थना करी, हे नारायण, राजा कंस अत्याचार कर बाल हत्या कर रहे हो, मैं कांप उठी हूँ, अब मुंह पे भार न सह जाए, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देवतान ने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि दुष्ट को नाश करो, देव की वसुदेव की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, बाल हत्या रोको। नारायण भगवान ने पृथ्वी देवतान को वचन दियो, ढाणस बधायो, धीरज बधायो, कहो जाओ मैं शीघ्र ही मनुष्य अवतार लेके कंस को वध करूंगू, पृथ्वी को भार उतारूंगू, धन की स्थापना करूंगू, साधु संतन जीव की रक्षा और दुष्टन को नाश करूंगू। मेटे काहू के मेटे नहीं विदना के अंग, और राई घटे न तिल भड़े, रह रे जीव निशंग। वसुदेव देवकी की सुहाग रात, विवाह के बाद जीवन कारागार में कटो, अति विचित्र भगवंत गति समझ पड़े नहीं को।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत देवकी वासुदेव विवाह के प्रसंग का। कथाकार थे गोस्वामी रामगोपाल। और आइए अब सुनते हैं ये ब्रज लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे भगवती देवी वाशिनी के स्वर में ये ब्रज लोकगीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित।

और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। यह रोजगार मेला राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा सहित पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
3: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल News on AIR लखनऊ पर

0: भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
1: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नित नए प्रयोग योजना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं।
0: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
2: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
0: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

कभी साथ बैठकर चुप रहना भी अच्छा लगता है। बिना कहे जो समझ जाए वो अपना सा लगता है। तुम्हारे साथ बिताए ये छोटे छोटे पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास बन जाते हैं। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र खुशबू। आप सभी को नमस्कार।

श्रोताओं, आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ होंगे। वैसे तो अपनी ये जो गर्मियां हैं इसमें अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप सभी के संदेश हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमने संदेश लिया है, आप हैं श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमनी, पुरंजय प्रजापति, कविता, गोविंद, सिमरन और प्रजापति फैमिली के सभी सदस्य। अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का, आप हैं जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवकिशन, भावना, मानस और कनिका पटेल। इन सभी का मैसेज हमें मिला है मोटक्का माफी जिला खंडवा से, किसी भी गीत की इन्होंने फरमाइश हमें लिख भेजी है। अगले पसंद करता है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, जूही इकबाल, दुखना सदफ, इमरान अहमद फूलवाले। ये संदेश हमें मिला है भटिंडा से, अशोक ग्रोवर, प्रवीण, विक्रमजीत, अनमोल और पवनीत ग्रोवर का। अगली फरमाइश करता है ये श्रोता अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन और सुलोचना भगत, पूर्णा जंक्शन मस्तनापुर से इन्होंने हमें ये संदेश लिखा है। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख, ये संदेश हम तक आया है। यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुराड़े, उषा, अनुश्री और धनश्री, बल्लहार शाह से सूरज लोटे, प्राची और एकव्य हमसे जुड़े हैं। और ये संदेश आया है आप सभी का छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। अगला संदेश हमने लिया है चौहलादाह बागवत से, संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया। शिवाजी उगले, राहुल उगले का संदेश हमें मिला है नादूरा से, और महाराष्ट्र से भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी, समर्थ, कुमारी सानिका, देठे पाटिल हमसे जुड़े हैं। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए अगला संदेश हमें मिला है नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवारकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान, ताइड़े और आशीष, इन सभी का संदेश हमें मिला है। और ये संदेश हमने लिया है दरियापुर भावली महाराष्ट्र से, गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, सुशील, शेरी वडनेर अकोला से, अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर का, भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष हमसे जुड़े हैं बेंगलुरु से, रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय इनके साथ हैं, इन्होंने हमें संदेश लिखा है गांधी बाग अकोला से। अगला संदेश हमने लिया है खमरिया छत्तीसगढ़ से, साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री और प्रतीक कुमार का, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद हमसे जुड़े हैं झारखंड से, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल का संदेश मिला है जमशेदपुर से, ये हैं विपिन जायसवाल, स्वाति देव और आर्य कुमार। तो सुन लेते हैं।

आप सबकी फरमाइश का ये गीत। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल स्वर में आपने सुना जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये गीत। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। तो हम तक ये संदेश आया है गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार। गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल हमसे जुड़े हैं और ये श्रोता हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, शिव कुमार शर्मा, बेबी वैदेही जोशी और हंसिका जोशी, इनके साथ हैं कुमारी अकिता। और अनूपपुर मध्य प्रदेश से इन्होंने ये संदेश हमें भेजा है, जैनवती कैवट जी हमसे जुड़े हैं। और अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का। आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहद परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। इनका संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी हमसे जुड़े हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से। अगला मैसेज हमने लिया है मोताला महाराष्ट्र से। विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती, गौरी और ओम कुमार सुरलकर का। अंबाला हरियाणा से अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद और नवेद इरशाद हमसे जुड़े हैं जौनपुर से। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे जूली फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी गांव गोपी की नगरिया से मिठ्ठलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके सभी परिवारीजन, गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जसुदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा, गांव कुमोदवन से रमेश, सुनील, रचना, गब्बर और इनके सभी परिवार।

रीजन। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा, गांव नौगांव से सीता राम, रेखा कॉलोनी रोशनी और इनके सभी मम्मी, इनके मम्मी पापा। अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल, वनिता और मोहम्मद हसनैन पवार। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए अगला मैसेज हम तक आया है, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा का, हर्ष विनय विनीत रोजस भाई, इन सभी का मैसेज हमें मिला है, मनाली हिमाचल से, चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का हमें ये संदेश मिला है। और ये संदेश हमने लिया है देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी, मास्टर अल कबीर हमसे जुड़े हैं बालो छत्तीसगढ़ से। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए अगला संदेश हमें मिला है, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, बीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हैं अमरावती महाराष्ट्र से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से इन सभी का मैसेज हमें मिला है, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ हमसे जुड़े हैं। ये संदेश आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय। अगला संदेश हमने लिया है छत्तीसगढ़ से, फनेश कुमार चंदन, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र और हेयांश कुमार चंदन, हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, इन सभी का मैसेज हमें पुनः मिला है, तो कृपया करके पुनः मैसेज ना भेजें, हमने आप सभी के नाम पढ़ लिए हैं। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, भाई सुच्चा पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव, नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम और यशफ अब्बासी हमसे जुड़े हैं एटा से, और सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन हमसे जुड़े हैं। और ये संदेश हमने लिया है आप सभी का, किसी भी गीत के लिए इन्होंने फरमाइश हमें भेजी है, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश अरोड़ा हमसे जुड़े हैं। और ये संदेश हमें मिला है आप सभी का, आप हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन, इनका भी हमें संदेश एक बार पुनः प्राप्त हुआ है। वरकट वकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे, तो

इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शहरावास सरफराज फरदीन सुहान अरजान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो हमसे जुड़े हैं जनकपुरी सहारनपुर से।

नेहरू चौक पैठर से सुरेश जाधव, अनीता आरती प्रसाद, सोनल बेबीसिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीत

बॉम्बे जयश्री की आवाज में आपने सुना रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म का गीत। और अब चलते चलते ले लेते हैं आप सभी के संदेश। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ये संदेश मिला है हमें। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा, दीपक और अनुश्री का। तो इसी के साथ आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बेहद ख्याल रखें, और सबसे बड़ी बात, हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कलाकार, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, और अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की स्वर में, फिल्म का नाम है उफ ये मोहब्बत।

स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः है फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको ये गीत।

कुमार सानू साधना सरगम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे सैनिक फिल्म का गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे मीनाक्षी कुंदू और साथियों की आवाज़ों में ये देशभक्ति परक रचना। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय पथ फिल्म के कुछ गीत।

विजयपथ 1994 की एक सुपरहिट एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें अजय देवगन, तब्बू और डैनी मुख्य भूमिकाओं में थी। फिल्म का निर्देशन फारूक सिद्दीकी ने किया और संगीत से सवारा अनु मलिक ने।

इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आज आपने आनंद लिया विजय पथ के कुछ गीतों का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत

0: डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं

0: हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर मनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं।

0: विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister

ने सुना ये वादा रहा फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है यंगिस्तान।

नागिन, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर दिया था लता मंगेशकर ने। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाश

0: आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर, जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था, जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह।
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं, जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ आईआईटी, कुछ एनआईटी, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार आईआईटी पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। एआई के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम एआई के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
0: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
5: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपोजिट्स होता है, सो ये डिपोजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्कली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्कली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है इससे हम लोग कर रहे सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर

0: सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हो रही है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
0: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले, दरभंगा।

0: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसके गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
1: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
2: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी उतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
3: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। K.R. रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी COVID-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया

0: ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
1: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार।
2: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साथी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्ण है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका अद्वितीय है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
3: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। क्योंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की।

0: और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहें।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
2: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरला वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shrimushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापु ताल।

0: प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहि माम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvira Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19

रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।